भजन करो हरे जगत जगतारे भजन।

0: सारो हरे जगत जगतार भजन सारो हरे जगत
1: सारी सर से।

0: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम शुभ कल में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोता साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि शुभ कल कार्यक्रम विगत कई वर्षों से हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, नए नए कार्यक्रम इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं। साथ में हम प्रयास करते हैं कि हमारे श्रोता साथियों को वो छोटी से छोटी जानकारी आप लोगों तक उपलब्ध कराई जाए, पहुंचाई जाए कार्यक्रम के माध्यम से, जो आपको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और हम देख भी रहे हैं। हम कार्यक्रम को जब बनाते हैं तो सारे बिंदुओं को हम कोशिश करते हैं कि कवर करें। हमें लगता है कि अब चूंकि हम इस कार्यक्रम को मनाते मनाते अब हमें ऐसे विषय ढूंढना होगा, ऐसे विषय के लिए चयन करना होगा जो आपके लिए एकदम नए हो। हम कार्यक्रम के माध्यम से कई दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि शुभकल कार्यक्रम में अजीब का से जुड़ी बातचीत करते हैं, हम शुभकल कार्यक्रम में पर्यावरण से जुड़ी बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है श्रोता साथियों कि अब शुभकल कार्यक्रम में बदलाव की जरूरत है, अब उस शुभकल कार्यक्रम में कुछ ऐसा जाना चाहिए जो दिल को छूने वाला हो और आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो? तो इसके लिए साथियों, आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि जब आप हमें बहुमूल्य सुझाव देंगे उस पर हम काम करेंगे, उस पर हम कार्यक्रम को बनाएंगे, फिर उस कार्यक्रम को आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी साथियों रहती है। तो हम कोशिश करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले अब समय में हम इस कार्यक्रम का बदलाव करेंगे और इस कार्यक्रम में बेहद जानकारी जो आपको हम उपलब्ध कराते हैं उससे और अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध कराएं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में चूंकि बहुत दिनों से चल रहा है कुछ नया करने के लिए, हम वही पर्यावरण पर बातचीत करते हैं, जलवायु पर बातचीत करते हैं, आजीविका पर बातचीत करते हैं, लेकिन साथियों आज हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि हमारे श्रोता साथी, चूंकि हमारे साथी खेती किसानी करते हैं, खेती किसानी में चूंकि अगर

पर्यावरण को जोड़ा जाए तो एक अलग पहलू हो जाता है। यदि खेती किसानी में हम दूसरी अन्य चीजों को जोड़ा जाए, जैसे आजीविका को जोड़ा जाए, तो वो अलग बिंदु हो जाता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में, चूंकि हमने पहले शुभ कल कार्यक्रम जब स्टार्ट किया था, शुरुआत इसकी की थी, तब हमने एक कैंपेन किया था कौन बनेगा शुभ कल लीडर, तो उसमें हमने जो 5 गतिविधियां इस कार्यक्रम के माध्यम से ली थी वो थी किचन गार्डन, अमृत मिट्टी बनाना, केचुआ खाद बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी। तो ये सारे विषय जो 5 विषय थे, उस विषय पर हम पुनः जाना चाहेंगे, क्योंकि अब वो समय है कि हम अपने श्रोता साथियों को वो जानकारी उपलब्ध कराएं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में साथियों, आज हम बात करेंगे अमृत मिट्टी बनाने की। अमृत मिट्टी बनाने पर हमारे बैरू भौजी का जो किरदार है, जो आपको बहुत लुहावना लगता था, बहुत बेशक पसंद था हमारे श्रोता साथियों को, तो आज उनका कैरेक्टर भी हम इस कार्यक्रम में लेकर आएंगे। साथ में हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं इससे जुड़े, उनसे हम अमृत मिट्टी बनाने सीखेंगे, जानेंगे, क्योंकि बहुत ही सरल है अमृत मिट्टी बनाना। और लेकिन इस जलवायु को देखते हुए, इस खेती को देखते हुए अगर हम बात करते हैं जैविक खेती की, तो उस जैविक खेती में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अमृत मिट्टी, क्योंकि नया है ये खाद बनाना। हमने मटका खाद सुना होगा, केंचुआ खाद सुना होगा, गोबर की खाद सुना होगा, तो इसका कॉम्बिनेशन जिसे कहा जाता है कि हम एक जगह ऐसी जो फालतू चीजें जैसे पत्ता का इस्तेमाल हम करते हैं, फेंक देते हैं उसको, या तो जला देते हैं, गौमूत्र इसमें लगता है, गोबर लगता है इसमें, तो तमाम प्रकार की जो चीजें हैं उस अमृत मिट्टी बनाने में लगती है। तो आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में साथियों, अमृत मिट्टी बनाना आपको बताएंगे, बैरू भौजी का करेक्टर आपको सुनवाएंगे, लेकिन साथियों बातचीत हमारी काफी हो चुकी है, एक गीत के साथ आपको मनोरंजन कराते हैं, तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम सुपकल में। और साथियों, अभी आपने नारायण दास दर्द और उनके साथियों की आवाज में इस प्यारे से लोकगीत को सुना, पर्यावरण से जुड़ा लोकगीत है। आप कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बैरव भौजी का किरदार जो हमारी निभाती हैं, उनसे हम अमृत मिट्टी बनाना चूंकि उनने भी बताया है, तो आइए इस नाटकीय रूप को हम सुनते हैं।
1: अरे लालाजू, आज तो बगल में रेडियो रखे हो और जो, लेकिन क्या कर रहे हो तुम?
2: अरे भौजी, कर तो तुम रही, तुम बताओ क्या कर रही? आज तो बड़ी गजब ढा रही तुम तो।
1: अरे लालाजू, का इतने ही जा रहे थे ना, एक महीने की बजा रहे हुए हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे?
2: अरे भौजी मोई ना सुनो, अब वो कितने यहाँ के आधी अधूरी जानकारी ले लो तो कितम के नीयत ना घर के ना घाट के।
1: का कह रहे हैं लालाजू, आधी माधी कर लेते सो वही कर रहे, का कर रहे?
2: अरे भौजी ध्यान से सुन, जा कह रहा है कि अगर अपन को आधी जानकारी हो गए कछु भी चीज की कछु भी काम की, तो ना घर के रहे ना घाट के रहे।
1: सो बास का कह रहे लाला जू, घर को पता, घर को ना घाट को?
2: अरे बाकाना दूसरी, हम जा दूसरी कह रहे कि अब जो जो जो काम कर रहा है, जो हम वो बना रहे, जो हमने एक दिन सुनी थी का अमृत मिट्टी।
1: अमृत मिट्टी के बारे में सुनो तो?
2: हाँ, सो अब हमने बात सुनी तो है नी, अब लेकिन ध्यान से नहीं सुन पाई, सो अब लगे हैंगे जी सब बनावे हम।
1: ध्यान से काहे नहीं सुनी भाई, पूरी काहे नहीं सुनी लालाजू?
2: अब बस भौजी तनक एक संग दूसरा काम कर जा रहे थे, वो एक जने हमें बता रहे थे भी बड़ी बता, तो इन्हों नहीं तरह से रहती, लेकिन हाँ। हमने ध्यान से नहीं सुन पाई, वह हमारी गलती हो गई अब।
1: अरे लालाजू, मैं जानत होंगी तुम्हें, तुम मन के तुम और लगो हो जी, अब तुम्हें काहे को मत सुनाई दे ढंग से, अब तुम सुन रहे थे तो उन्हें वज्र सुन लेते होते, उनमें मन ना लगाते।
2: अरे भौजी तुम केवे को मतलब का है, कुन में उतर तुम मोड़िया ने देख रहे हो तो?
1: मैं तो जय कह रही, तुम जो ही कर रहे हो और बामे ध्यान कम दे रहे हो, अगर कोनो जानकारी सुनना है तो ढंग से सुन लो।
2: अब भौजी नहीं सुन भाई अब, लेकिन मैंने कही चलो जैसी सुनी तो बनाई ली।
1: हाँ राम दे, तुम्हें तो खूब बात है गो, अब बना लो।
2: अब भाई तो कर रहे हैं भौजी, सब तेवर बीच में आ गई।
1: अच्छा तो अभी तक का करो तुमने?
2: अब जी सब सब सामान तो सट्टा बटोर लो, खट्टो तो कर ही लो।
1: लाला तो तुम्हें देख के हंसी आ रही।
2: अब का भाजी, जब काम करे तो भड़ना जाए, ऐसे तुम्हें कौन सी हंसी आ रही?
1: ऐसे काम को देख भड़ गए जैसे मन जाने का पूरी अमृत मिट्टी तुम्हारी बना रहे हूँ।
2: अरे भौजी, जब अपन पूरी तरह से, जब पूरी तरह मिट्टी में मिल के काम करे तो अच्छी तरह से बने, हमने सुनो कि कोई चीज में अच्छी तरह से घुल मिल के काम करो तो अच्छा हो जाते।
1: का कह रहे लालाजू, दूध में मिला मिला के पियो तो अच्छा हो जाते?
2: हाँ, कोनो काम अगर अपन अच्छा घुल मिल के करे भाई मिलोच से, तो हमने की तनक भड़ जाओ तो कौन सी दिक्कत है?
1: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कह रहा है क्यों मैं भिड़ जाओ तो मजने क्या, मैं और मुँह पोत दू मैं तुम, तो नेक और अच्छे लगो सुगाटा जैसी।
2: तो फिर भौजी दिखाए कैसे सुगाटा से, तो मैंने बन जे
1: का कह रहा है लालाजू, चाटा घल जे मैं देखा तुम्हें, ये हो गई तुम्हारी हमें।
2: अरे भौजी तेन तो कह रही की सुगाटा से बन जे, तो मैंने कही सुगाटा से बन जे से, तो दिखाए कैसे चाटा को मार रहा तुम्हें?
1: अच्छा तो मैं देखती है भूल करे तुम तो वही की वही घुसरू घुसरू कर ले।
2: अब तो सुनाते है इतनी तेज कहते है, मैं कौन बिहारी हूँ?
1: कहा कह रहे लालाजू?
2: कछु नहीं जब कह रहे, ऐसे कह रहे थे कि बता दो करूँ काम, मैं समझ में नहीं आ रही।
1: अरे लालाजू तुम चलो मैं ही बताए देता हूँ, मुझे तो मालूम है, मैंने खुद सुनो तो।
2: अब लेकिन तू तो भौजी जाने तो सज के तो ठाड़ी है।
1: कहा कह रहे लालाजू, तू तो जाने है?
2: हाँ तो ठाड़ी सजी,
1: तो अब सजी ठाड़ी, लेकिन अब मैं तुम्हें बताए दे रही होंगी पहले, अब तुम अब लगे तो होंगे काम कर भी, तो मैंने की अब तुम्हें बताए देता हूँ।
2: अरे मैं सब जाना जा, आई हुई मुई ने सज बज के बातें मारे झूठी झूठी।
1: कहा कह रहे लालाजू, झूठी कह रही?
2: अरे भौजी कछु नहीं, अब बता देते हैं तो।
1: हाँ तो मैं बताए देता हूँ, अब मुझे जाने होते, अब मैं टेम हो रहा हूँ वो, तो देखो अमृत मिट्टी तुम देखो जो बनाते हैं लही है, लेकिन की के लाने तीन चीजें, जैसे एक तो अपन अमृत मिट्टी जो बना रहे, लेकिन ई के पहले अपन को अमृत जल बनाने पर रखे।
2: अच्छा अमृत जल बनाने?
1: हाँ, यानी कि अमृत पानी बनाने, वो कैसे बने थे?
2: हाँ,
1: वो जो गैया को गोबर हो बाय ले लो,
3: ठीक है,
1: और का ले लो गोबर ले लो है, और एक सड़ो गड़ो फल हो तो अपनो, चाहे केला हो चाहे वो अपन जो मतलब नहीं खा रहे सीधी बात।
2: अच्छा
1: है, वो ले लो सुबह एक डिब्बा में घोल के और रख दो, कै दिना के लाने? तीन दिना के लाने, ठीक है लाला जी? आ रही समझ में?
2: बिल्कुल बिल्कुल, नौनी तरह से यहाँ जा रही।

0: लालाजू ने कम तरीका से आ रही।
1: अरे बात पूरी तरीका से आ रही।
0: भाई तो मैं कह रही सुबह एक डिब्बा में अपन रख दे 3 दिन के लाने, लेकिन अपनी जो अपन ऐसे महरी टारत भाई को चमचा कहूँ ऐसो घुमा दे, कहूँ ऐसो घुमा दे उल्टो सीधो मतलब तो बस चमचा को ऐसे घुमाने
1: कब जी कब हड़िया को मुन्ने जो करने के ऊपर करने।
0: अरे लालाजू बस चमचा से अपन महरी बस जब अपन बेसन बस जारत के वहाँ में गुठला ना पड़ जाए तो भाई चमचा को ऐसो घुमा और फिर ऐसो घुमा।
1: अच्छा ईलंग और उलंग
0: हाउ सुबह एक ही मिल जाए है 3 दिन में, फिर उसके बाद लालाजू वो तुम्हें जो करने के परते बनाने वो बन गो अपनो जल जल बन गो अब वो बनाने अपन को अमृत मिट्टी उके लाने तुम्हें जो करने पड़े के एक खेत में जितने तुम्हें बनाने उतने में तुम पहले मट्टी बिछाओ जैसे इतनी सी परत में मतलब मट्टी बिछा लो पट्टिया मान लो फिर बनाने तो अपन पट्टिया जितनी मट्टी बिछा ले उके ऊपर गोबर बिछा दे फिर उके ऊपर पानी लाकर अमृत पानी लगातार के छत जाने ठीक है लाला जी।
1: अच्छा
0: हाओ और फिर उके ऊपर अपन फिर से मट्टी बिछा दे
1: फिर से मट्टी बिछा
0: हाँ, मट्टी बिछावे के बाद फिर अगर कूड़ा कचरा है अपनी गंज में भैसन को तो ऊपर बिछा दो बाकी आ रही
1: हाँ, आ रही है
0: फिर ऊके ऊपर फिर मट्टी बिछा दू है और फिर जो अपन ने बीज लेने पर 10 प्रकार की में
1: 10 प्रकार की बीज लेने
0: हाओ चाहे गेहूँ बाजरा मटर सब ले लो और ऊमें भी बे दू और पानी लगातार छत जाओ ठीक है फिर लगातार 10 दिन बाद अपनी जो गेहूँ उगे भी वो लाला जी ये और करने कुछ अपन ने बीज बोए बाकी ऊपर अपन को वो बिछाने का
2: पत्ता
0: डालने ठीक है डालने के बाद मैं अपन को लाला जी तुम तो सुन नहीं रहे मेरी बात
1: मुड़ी तो मटका जा रहा हूँ मैं इतनी
0: मुड़ी से नहीं मैं तो हूँ का दियो
1: अच्छा हूँ का देने आए अब मैं तो सब देखा जा रहा हूँ और करत भी जा रहा हूँ
0: तो ठीक है सो ऊ के बाद तुम वो अपनी जो हो जाए मैं पेड़े बड़ी सी मतलब उगी आए नहीं अपने सुबह काट के आधी वही में मिला दू गाय में वही में जो अपन ने लगाई है
1: अच्छा
0: हाउ फिर 10 दिन बाद हो जाए तो फिर से मिला दो और जब 100 दिन बाद फिर से हो जाए तो भाई पूरी छोटी छोटी करके काट लो और ऊको फिर से वही में मिला दो
1: तो फिर बन गई मट्टी
0: फिर ऊको वहाँ फिर ऊको खरुआ लेके मिक्स कर लो
1: अच्छा
0: हाओ मिक्स करने के बाद फिर जितने अपन गेहूं कछु लगा रहे डाल दू तो वो एक अपना रासायनिक खाद को उपयोग करे जो आपको तत्व मतलब बामे मिल रहा है जैसे साथी इनकी कहावत रहती है बामे रासायनिक बामे खाद में ज्यादा वो मिल जाते हैं तो इनमें भी उतना ही तत्व मिले और 2-3 चीजें और फायदा भी है इनमें
1: तो अब तो बिल्कुल मैंने ध्यान से सुन नहीं थी बातें अब तो मैं बिल्कुल बना ही ले हूं।
0: हाँ तो इनमें 2-3 चीजें जो फायदा की है एक तो इसे अपना स्वास्थ्य सही रहेगा है लालाजू और दूसरो अपनो पर्यावरण अच्छो रहेगो लालाजू हो देखो मैंने अगर टोको तो और तुम तो नोरा जैसी मुड़ी नहीं मटका उसके मुड़ी लगे मटका भी मियो कछु में तो अपनो मोह है जो मियो तो मोह प्राला वो बतात बतात।
1: अरे भाजी तो कन्ने मुँह तो पूरी समझ में आ गई कैसे बनाया जाता
0: है। हाँ तुम तो वही ले आज 2000 की बोरी आ रही रासायनिक खाद की वही ले आज काय को जो बना हो तुम्हें तो तुम होंगे पक्के तुम तो नाव कर रहे थे सुन के तुम होंगे पक्के आलसी।
1: अरे भौजी अब तो बिल्कुल पूरी ध्यान में आ गई कि कैसे बनाने जरूर बना ले अब तो।
0: हाँ तो लाला जी मैं चली
1: बिल्कुल अब तो भौजी जरूर मिट्टी बनाऊं और जरूर अपने पर्यावरण को बचाऊं।
3: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में और साथियों अभी आपने बैरू भौजी को नाट के रूप में सुना और इनसे अमृत मिट्टी बनाना कुछ तो हमारे बैरू भौजी ने बता ही दिया है। अब हम आपको एक्सपर्ट के पास ले चलते हैं और उनकी सलाह हम लेते हैं अमृत मिट्टी बनाने के लिए तो आइए उनसे बातचीत करने से पहले हम एक और आपको लोकगीत सुनवा देते हैं क्योंकि मनोरंजन भी होता रहेगा और कार्यक्रम सुनवाते रहेंगे तो आनंद ही कुछ अलग आएगा तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से लोकगीत को रमेश और उनके साथियों की आवाज।

0: अभी आपने इस प्यारे से लोकगीत को सुना और लोकगीत का आनंद लिया। आइए अब आपको आलोक जी के पास ले चलते हैं, अमृत मिट्टी बनाना वो बता रहे हैं, तो जानकारी ध्यान से सुनिएगा, बाद में हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे तो तैयार रहिएगा। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से चर्चा को।
1: जैसा कि है अमृत मिट्टी, अमृत मतलब कि जो भी जीवनदायी चीज होता है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिट्टी को एक जीवन, अलग तरह का जीवन दिया जाता है जिसमें उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अमृत मिट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से आया कि अगर मान लीजिए अब मानव नहीं रहता है, जब जंगल रहते हैं तो जंगल के पौधे बिना बारिश और बिना अतिरिक्त खाद के कैसे हरियाली रहते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर अमृत मिट्टी को हम लोगों ने बनाने का कोशिश किया है। अमृत मिट्टी अगर हम बात करें तो अमृत मिट्टी के लिए बहुत सारे अलग बहुत तरीके नहीं है और बाहरी तत्व की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप जान सकते हैं केचुआ खाद के लिए केचुआ लाना पड़ेगा या दूसरी चीजें को लाना पड़ेगा, लेकिन अमृत मिट्टी एक ऐसा है कि आपका अगर गांव में जो भी चीज संसाधन है, जैसे गाय है या आपकी खेती का से निकलने वाला जो भी खरपतवार है, तो इसी से तैयार होता है। देखिए ये तो अमृत मिट्टी को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको भूमि की उर्वरा शक्ति जो बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके पास जैसा भी संसाधन है इसके हिसाब से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष जगह तैयार करने की जरूरत नहीं होती है, आपके पास जो भी भूमि उपलब्ध हो और जिस भूमि में आप दूसरा उपयोग नहीं करना चाह रहे हो या नहीं करते हो तो उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। ये इस अमृत मिट्टी को बनाने में करीब करीब 90 से 100 दिन लगते हैं, लेकिन इसकी उर्वरा शक्ति इतनी तेज और इसकी जो जल धारण शक्ति काफी अधिक बढ़ी।

0: जाती है, तो कम पानी में भी आपकी खेती बहुत अच्छी होती है। अमृत मिट्टी बनाने के लिए जो सामानों की जरूरत होती है या जो भी संसाधन की जरूरत होती है, वो आपके आसपास या आपके खेत खलियान से ही निकल के आता है। जैसा अगर कह सकते हैं, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, खेती बाड़ी से जो
1: खरपतवार निकलता
0: खरपतवार
1: है।
0: जो निकल के आता है वो, ये बस ये दो तीन चीजें हैं। और जो भी बीज आप लगाते हैं वो बस यही चीजें हैं जो आप अमृत मिट्टी में आसानी से इसका उपयोग करके अमृत मिट्टी बना सकते हैं। इस अमृत मिट्टी की खासियत यह है कि आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मिट्टी का उपचार कर सकते हैं। कोई मिट्टी को आप अमृत मिट्टी में परिवर्तित कर सकते हैं और या अमृत मिट्टी कहीं बनाकर किसी भी मिट्टी में डाल सकते हैं। ये तो मैं जैसा आपको बताया कि ये आपके ऊपर सारा निर्भर करता है कि आप छोटे से जगह पर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं या बड़े भाग में आप बनाना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी
1: जी
0: जस्ट बताया कि
1: जी
0: बुंदेलखंड के बारे में अगर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, बुंदेलखंड में जनरली आप देखोगे वो काफी सूखा ग्रस्त
1: बिल्कुल जी
0: जगह है और यहाँ पर जलधारण क्षमता बहुत कम है। जलधारण
1: जी
0: क्षमता कम होने की वजह से क्या होता है कि उनको बार बार पानी की किसी भी फसल में बार बार पानी देने की
1: यानी
0: आवश्यकता पड़ती
1: आवश्यकता
0: है।
1: पड़ती
0: तो अगर हम अमृत मिट्टी के इस प्रोसेस को अगर बुंदेलखंड में लाएं,
1: जी
0: जैसा
1: जी
0: मैंने अभी रामपाल भाई को भी बताया और
1: जी
0: अपने किसान भाइयों को भी बताया कि अमृत मिट्टी एक ऐसा मिट्टी उपचार है या खाद आप कर भी सकते हैं जिसमें गुणवत्ता जो भूमि भूमि
1: जी
0: या मिट्टी की गुणवत्ता है उर्वरा शक्ति
1: उर्वरा शक्ति
0: वो
1: बढ़ाने
0: काफी बढ़
1: की
0: जाती है
1: जी
0: और जल धारण क्षमता भी बढ़ती है जिससे
1: अच्छा
0: आपको
1: कम
0: सिंचाई
1: जी
0: देर से
1: कम देनी पड़ती
0: कम
1: है
0: देनी पड़ती है। अब जैसा अभी मैं बता रहा हूँ कि जो अमृत मिट्टी है वो आपके ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप कितनी भूमि में इसका प्रयोग करना चाहते हैं, आपके पास संसाधन कितने उपलब्ध हैं, आपकी अगर खेती हो रही है या कोई
1: जी
0: जमीन है वो कितना खाली पड़ा हुआ है जिसका
1: जी
0: प्रयोग
1: जी
0: नहीं करते हैं, तो उस पर सारा चीज निर्भर करता है। अगर आप मान लीजिए खेत का प्रयोग कर रहे हैं खेती
1: जी
0: के लिए, तो आप ऐसे भाग का प्रयोग करें जहां पर खेती नहीं करते हैं और फिर उस मिट्टी का उपयोग आप खाद के रूप में अपनी भूमि में कर सकते हैं। या
1: अच्छा
0: अगर आपका खेत खाली है, कोई लगता है कि बंजर है या जहाँ पर हम खेती नहीं कर पा रहे हैं,
1: जी
0: तो वहां पर भी हम इसका प्रयोग करके अमृत मिट्टी बना सकते हैं और उसके बाद फिर उसी खेत में आप दूसरी फसल ले
1: लगा
0: सकते हैं
1: सकते हैं। और जी
0: क्या।
1: जी
0: और ये तो और भी अच्छी बात है कि
1: बिल्कुल
0: किचन गार्डन क्योंकि घर के नजदीक ही होता है,
1: जी
0: तो एक अमृत मिट्टी का प्रयोग करके अगर हम किचन गार्डन करते हैं तो जो जो भी फसल होगी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब कि उसका जो
1: जी
0: भी काफी अच्छी हो जाती है
1: जी
0: और गुणवत्ता भी काफी जो फसल की है वो गुणवत्ता बढ़ जाती है,
1: अच्छा
0: तो किचन गार्डन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं।

रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम शुभकल में पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आलोक प्रभात जी ने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, हमारे वार्ताकार थी हमारी प्राची जी, और बहुत अच्छी उन्होंने सलाह दी है कि अगर आपकी खेती में गुणवत्ता लानी है, खेती को अच्छा बनाना है, तो अमृत मिट्टी डालकर हम इसको अच्छा बना सकते हैं और उनकी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये अमृत मिट्टी बनाना चूंकि बहुत ही सरल है जो कि उन्होंने बताया है, आप भी अपने घर पर अमृत मिट्टी बनाकर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। जैसे बार बार हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले आ रहे हैं कि हमें अब रासायनिक दवाएं जो हम खेतों में डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, उन पर हमें रोक लगानी चाहिए, दूसरों को समझाना चाहिए इस बारे में, क्योंकि जो बीमारियां पनप रही हैं, ऐसी रिपोर्ट बता रही है कि अधिकतर बीमारी जो रासायनिक खाद से उगाई गई सब्जियों से हो रही हैं। तमाम प्रकार की बीमारी जो अभी तक हमने सुनी भी नहीं थी, इस प्रकार की बीमारी अब हमें सुनने को मिल रही है। तो हमें इन बीमारियों से यदि बचना है तो जैविक पद्धति की ओर फिर से हमें मुड़ना होगा, जैविक पद्धति से हमें अपनी खेती को करना होगा। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है कि जैविक खेती हमारे किसान साथी इसको अप करें और अपनी खेती में बदलाव कर अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं, और जो हम अपने

0: हम अमल करते थे, तब एक नया कार्यक्रम हम बनाते थे। बहुत खुशी रहती थी कि हमारे श्रोता साथियों का इतने ज्यादा स्नेह रहता है, प्यार रहता है। जैसे कि हम अभी पठा में गए थे और हमारे जो विजय जी हैं काफी नियमित श्रोता हैं, और उनसे मिलकर हमें काफी अच्छा लगता है कि ऐसे हमारे नियमित श्रोता जो हमारे हर कार्यक्रम को सुनकर अपने बहुमूल्य समय निकालकर फीडबैक जरूर देते हैं, सुझाव देते हैं, चाहे वो बातें हमारी तुम्हारी कार्यक्रम हो, आज की बात हो, किसी भी कार्यक्रम के बारे में यदि उनसे जानना चाहे तो जान सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम उनको ऐसे हमारे श्रोता साथी जैसे वीकेश जी भी हैं, ऐसे हमारे श्रोता साथियों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम में जुड़कर फीडबैक हमें देते हैं और उस फीडबैक के माध्यम पर हम कार्यक्रम बनाते हैं। हम चाहेंगे कि अब हमारे जो अगले कार्यक्रम बनेंगे उसमें आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि इस विषय पर हमें कार्यक्रम सुबह कल में सुनना है, तो हम आपको रिकॉर्डिंग करेंगे और इस कार्यक्रम को बनाकर आप लोगों तक प्रस्तुत करेंगे। अब साथियों, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम सुबह कल से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात।
1: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए।

0: साथियों नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
0: साथियों आप तो जानते हैं कि हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के अंतर्गत हम समय समय पर अलग अलग तरह की जानकारी आप सभी के लिए लेकर हाजिर होते हैं। चाहे बात करें हम रोजगार सूचनाओं की या फिर व्यक्तित्व विकास की या फिर सफल कहानियों की या फिर छोटा काम बड़ा मुनाफा की, तो जैसा समय होता है वैसा काम हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो बिल्कुल साथियों आप दिल थाम कर बैठ जाइए और अपने कानों को खोल कर रखिए क्योंकि हम आपके लिए बेहद जानकारी लेकर आए हैं और बेहद जरूरी भी है ये जानकारी। तो आइए हम जानते हैं कि हम अपना व्यक्तित्व विकास किस तरह से निखार सकते हैं, क्या क्या टिप्स होती हैं जिनको अपना कर हम एक बेहतरीन पर्सनालिटी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि यदि हमारा युवा साथी कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसका व्यक्तित्व ही उसकी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि व्यक्तित्व विकास निखारना यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, ये एक युवा साथियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है और खासतौर पर समाज के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में व्यक्तित्व विकास कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे और कुछ मूल मंत्र जो रहते हैं उसे भी हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से।
0: साथियों अगर हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो कैसे निखारें, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है। तो उसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि जब हम जागरूक होंगे तभी हमारे अंदर व्यक्तित्व विकास होगा और साथ में हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, हमें अपने ऊपर विश्वास भी होना चाहिए कि हम इस काम के लिए परफेक्ट हैं। साथियों 21वीं सदी में सफलता पाने का ये जो मूल मंत्र होता है यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके पास कुछ खास चीजें हैं जैसे कॉन्फिडेंट, लुक्स, लैंग्वेज पर कमांड और कुछ खास स्किल्स हैं, तो वो 21वीं सदी का सफल व्यक्ति माना जाता है। भले ही वो किसी भी मुकाम से मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, अगर उसके पास ये गुण हैं तो वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। आज के दौर में कामयाबी का मूल मंत्र है व्यक्तित्व विकास। इसके नाम से ही कई लोग लाखों कमा लेते हैं। हर गली मोहल्ले में व्यक्तित्व विकास की क्लासों का बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है कि आप आइए और अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारेंगे, इसके लिए आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास कैसे कर सकते हैं, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, पढ़ने की आदत बनाएं, सुनने की आदत डालें, बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चेहरे के हाव भाव पर भी

0: नियंत्रित रखिए, दूसरों को महत्व दीजिए और अपना व्यू जरूर दें। इंटरेस्ट डेवलप करें, नकारात्मक से बचें। साथियों, नकारात्मक जो शब्द होता है, ये वाकई में वो सारी चीजें देखता है जो हम सोचते हैं। यानी कि अगर हम कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं तो नकारात्मक चीजें भी हमारे पास ही चली आती हैं, पीछे पीछे चली आती हैं, और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये घर कर जाती है कि ये आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इन सभी चीजों से बचना है। हमें नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उससे आपको दूर रहना है और सिर्फ सकारात्मक चीजों को सोचना है, समझना है और करना भी है।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा। और जैसे कि वर्षा ने बताया है कि व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है आत्मविश्वास को बढ़ाएं। दुनिया के आधे काम तो एक शब्द से जुड़े होते हैं। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। आत्मविश्वास की ताकत आपके चेहरे से झलकती है जो आपकी छवि को निखारती है। अगर किसी कारण से आप किन्हीं चीजों से डर भी रहे हैं तो आप कभी उसे अपने चेहरे पर ना आने दें। हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा अपने चेहरे पर निडरता का भाव रखें। ऐसा दिखाएं कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच एक पतली लाइन होती है, उस लाइन को कभी क्रॉस ना करें वरना आपकी छवि बहुत खराब हो जाती है। आत्मविश्वास में कमी है तो एक मौका मिलता है, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो मौका बिल्कुल नहीं मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा है मनीष जी आपने, क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना वो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं गलत साबित कर देता है। तो आगे हम जहां पर व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं, वहां पर पढ़ने की आदत बनाएं, ये बात भी बहुत अहम भाग है इसका और बहुत अहम रोल भी ये निभाती है।
1: जैसे कि पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है और वाक शक्ति बढ़ती है, मतलब भाषा प्रभावशाली होती है। पढ़ने से सामान्य ज्ञान बढ़ता है जिससे आपका प्रभाव सामने वाले पर अच्छा पड़ता है, साथ ही आपके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। अगर आपका ज्ञान अच्छा होगा तो आपका खुद में आत्मविश्वास महसूस होगा। पढ़ने से इंसान सीखता है और सीखने की किसी भी वस्तु से व्यक्तित्व का विकास होता है, और पढ़ने से व्यक्ति अपडेट भी रहता है। उसे वर्तमान में क्या चल रहा है पता होता है, इससे व्यक्ति की कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, साथ में उसको कई लोगों के बीच नाम भी मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, पढ़ने की आदत दोस्तों ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन आजकल जो हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, आज की 21वीं सदी में लोग किताबों से कम, खासतौर से हमारे युवा साथी किताबों से कम मोबाइलों से ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी और आपको पढ़ने की यानी किताबें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, जिससे आपके पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार होगा और आपसे अगर कोई सवाल करता है तो आप उसका तत्कालीन उसका जवाब दे सकते हैं, ताकि आपको याद रहेगा कि ये सवाल मैंने कहीं पढ़ा था और इस सवाल का सही आंसर ये हो सकता है। इसलिए किताबों को अपना दोस्त बनाइए, मोबाइलों को नहीं, क्योंकि मोबाइल एक टाइम के लिए होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, आपका समय पास नहीं होता है, तब थोड़ा सा मनोरंजन आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन दोस्त जो है आप अपनी किताबों को ही बनाइए, मोबाइल को बिल्कुल भी नहीं। आगे एक और बात आती है व्यक्तित्व विकास में, हमें सुनने की आदत भी डालना है। दोस्तों, कभी भी हम कहीं जाते हैं या किसी के सामने बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि लोग हमें सुने, यानी कि हम बोलते ही रहते हैं, लेकिन सामने वाला जब बोलना शुरू करता है तो हम उसकी बात को काट देते हैं, हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत आदत होती है। तो हमें क्या करना है, सुनने की आदत डालनी है, सामने वाला क्या बोल रहा है उसे ध्यान पूर्वक से सुने।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि सुनने की आदत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है और व्यक्तित्व के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और यदि किसी आप जगह जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं या नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं तो सुनने की आदत आप डालिएगा। बॉस क्या कह रहा है या आपका जो साथी है वो क्या कह रहा है, आपको पता चला कि आपका साथी आपको अच्छी अच्छी चीजें बता रहा है, ज्ञान दे रहा है, और आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमें तो ये सब आता है, तो ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं रहती हैं। साथियों, आगे भी हम इस कार्यक्रम में बॉडी लैंग्वेज पर

क्या काम करना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चेहरे के भाव को कैसे नियंत्रण कर सके, इस पर भी महत्वपूर्ण बात बताएंगे। दूसरों को महत्व दें, ये भी बहुत जरूरी रहता है। अपना व्यू जरूर दें, इंटरेस्ट डेवलप करें, नकारात्मक सोच से बचें। ये सारी बातों को हम सुनेंगे कुछ देर बाद, यानी सुनते हैं यहाँ पर इस गीत को, और गीत के बाद फिर लौटेंगे और व्यक्तित्व विकास के जो महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं उस पर चर्चा होगी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

आप आगे देखें, कहने लगी वो आत्मा, रहती अनपढ़ तो उस पर भी ना थी उजर। मैं अनपढ़ भी बनी रहती तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मुझे जिंदा तो रहने देते।

नीति अगर होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी।

0: बात साथियों, एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और साथियों, हम होंगे कामयाब के अंतर्गत हम जान रहे हैं व्यक्तित्व विकास को लेकर बात कर रहे हैं।
1: तो व्यक्तित्व विकास का अगला पन्ना आता है, यानी अगली बात आती है, वो बॉडी लैंग्वेज पर कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के बोलने उठने बैठने के तरीके से उसके व्यक्तित्व की झलक दिख जाती है। इस दिशा में खुद को जागरूक बनाएं, पहले खुद में झांकें और अपनी गलतियों का अवलोकन करें, फिर उन्हें सुधारें। क्षेत्रीय बोली कई बार आपके बोलने की स्टाइल को प्रभावित करती है। जैसे जो लोग अपने गांव में खड़ी बोली बोलते हैं, उनकी इंग्लिश या हिंदी में उसकी ट्यून आ जाती है, जो कि आपके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव डालती है। अतः ऐसी कमियों को पहचानें एवं उसको सुधार करें, इससे आपके आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। अपने आप को सीमित दायरे से बाहर निकालना भी व्यक्तित्व विकास का एक हिस्सा है।
0: बिल्कुल साथियों, जैसे कि आप कई बार जानते हैं, आपके खाने का तरीका बदलें, घर में जैसे चाहे वैसे रहें, लेकिन बाहर ध्यान से रखें। जैसे आप होटल गए हैं, सभी ने वेज ऑर्डर किया है, तो आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं तो करें, सभी के बीच नॉन वेज ऑर्डर ना करें। अगर

0: नॉन वेज खा रहे हैं तो अलग बात है, क्योंकि आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तब आप वेज ऑर्डर कर सकते हैं। खाते वक्त आवाज ना करें, बोले ना, और सभी का भोजन खत्म हो उसका वेट करें, तुरंत हाथ धोकर ना बैठ जाएं। यह सभी पॉइंट डाइनिंग मैनर्स के अंतर्गत आते हैं। इनको सुधार करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, जिससे आपका विकास होगा। उठने बैठने का तरीका सही रखें, घर में किसी के आने पर खड़े हो जाएं और उनका वेलकम करें, यानी स्वागत करें, ना कि बैठे रहें और अथवा लेटे रहें। कितना भी थके क्यों ना हो, किसी गेस्ट के आने पर उनसे बिना पूछे ना सोएं। कुछ भी खाने से पहले अगर आपके साथ कोई है तो पहले उनसे पूछे। यह सभी बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन यह सभी आपकी छवि को निखारते हैं, आपके व्यक्तित्व विकास में सहायता करते हैं। अपने लुक्स पर भी ध्यान दें, जैसे जो कपड़े आप पर अच्छे लगते हैं वही पहने। जगह एवं ओकेजन देखकर ही फैशन करें। आपकी हाइट, हेल्थ एवं बॉडी कलर के हिसाब से ही कपड़े पहने, इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। और अगर आपको इन बातों की समझ होगी तो लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको लग रही होंगी कि ये तो बेफुजूली बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपके व्यक्तित्व निखारने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। अगली बात आती है कि आपके चेहरे के भाव को आप नियंत्रण रखें। किसी से भी मुस्कुराकर मिलें, भले आपका मूड खराब हो, आप परेशान हो, लेकिन इसका एहसास किसी को ना होने दें। इससे आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आपको लोग पसंद करते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं। कभी कभी हमें किन्हीं बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो आपके चेहरे पर दिखने लगता है। कोई बात बुरी लगने पर आप हमारे चेहरे पर दिखने लगता है, हाव-भाव दिखने लगता है, आपके व्यक्तित्व को गलत तरह से सबके सामने रखते हैं। इसलिए अपने भावों को नियंत्रण करें। एक्सप्रेशन या भाव भी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहायक होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने। कई सारे लोग होते हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने भाव को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जो कि उनके लिए और सामने वाले के लिए भी कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित होता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी बॉडी की हर एक चीज पर कंट्रोल होना अति आवश्यक होता है। हमें हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज हमें कहाँ बोलनी है, कौन नहीं बोलनी है, कब हमें गुस्सा करना है, कब गुस्सा नहीं करना है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति का गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो सकता, वो दुनिया में किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इस बात को आप याद रखिए और हमेशा अपने गुस्से को नियंत्रित रखिए।
1: अगली बात आती है कि दूसरों को महत्व दें, क्योंकि यह एक जरूरी पॉइंट भी है। इसे एक उदाहरण से समझें। अगर आपके घर में शादी है जिसमें कई रस्में होती हैं, जैसे कि हल्दी की रस्म होती है, बहुत सारी रस्म होती है वगैरह वगैरह, इन रस्मों में अपनों की जरूरत होती है, जहां आपको हमेशा दूसरों को आगे करना चाहिए। ये नहीं कि आप आगे आ जाए और दूसरों को पीछे रहने दें, नहीं, आपको दूसरों को आगे करना चाहिए। अपने आप को एवं घर के लोगों के अलावा अतिथियों को पहले शामिल करना चाहिए। इससे जैसे फूफा फूफा भाई, मामा माई भाई और जीजा जीजी भाई, इन्हों तो पहले ही आगे कर दो जाके, ना तो परेशान हो जाओगे। तो ये सारी हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि आप अतिथि आपके घर में है तो उनको यदि किसी रस्म में शामिल हो रहे हैं तो उनको सबसे पहले आगे करें। इससे भी आपका व्यक्तित्व सभी की नजरों में अच्छा होता है और ऐसा ही व्यवहार हर जगह होना चाहिए। यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। इससे आपको लोग व्यवहारिक समझते हैं, जो कि सामाजिक दृष्टि से बहुत मायने रखता है।
0: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने, क्योंकि कई सारे ऐसे मौके होते हैं जब हम घर में दोस्तों को, रिश्तेदारों को और कई सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, लेकिन हम खुशी के मारे हम ये भूल जाते हैं कि हमने किसी को इनवाइट भी किया था, और सारी फोटो में या सारी रस्मों में हम अपने ही परिवार के लोग, अपने ही घर के लोगों को शामिल करते हैं, उन लोगों के बारे में हम सोचते भी नहीं है। या फिर यूं कह लीजिए कि कुछ बुजुर्ग

0: सारे रिलेशन वाले होते हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं साइड में ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अरे वो तो बुजुर्ग हैं वो क्या समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फीलिंग उन्हें भी होती है, उनको भी लगता है कि भाई हम इतने पुराने हैं, घर के बड़े हैं, रिश्तेदारी में भी बड़े हैं, लेकिन हमें पूछा नहीं है। तो ये आपकी एक पर्सनालिटी को दिखाता है, आपके व्यक्तित्व को दिखाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। इसलिए हमेशा अपने से पहले अपने जो बुलाए हैं उन लोगों का सम्मान करें, उन लोगों को महत्व दें। अब बारी आती है दोस्तों, अपना व्यू जरूर दें। आपने कई बार अपने पारिवारिक मामले या ऑफिशियल मामलों में ठीक से सुनने के बाद हर बात पर अपना दृष्टिकोण जरूर सामने रखें। बस ऐसा करते वक्त पोलाइट शब्दों का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे, आपकी बात से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। सभी को ध्यान में रखते हुए बात करें। अगर सही शब्द एवं सही तरीके से बात कहेंगे तो किसी के विरोध में कहने पर भी उसे बुरा नहीं लगेगा, अपितु वो आपको समझने की कोशिश करेगा। इसके में बहुत सहायक होते हैं, इनसे आप एक भीड़ से अलग छवि बनाते हैं। तो कभी भी आपको लगे कोई मामला हो रहा है, कोई डिसीजन आपके परिवार में या आपके ऑफिस में या आपकी क्लास में लिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो, तो अपना व्यू आप जरूर दें। आपकी जो भी राय है, जो भी प्रतिक्रिया है, आप उनको जरूर बताएं। क्या होगा, उनको पसंद नहीं आएगा आपका सुझाव, लेकिन सुझाव आपको जरूर देना है, जैसे आप हमारे कार्यक्रम का सुझाव देते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा। और कुछ बातें और बची हुई हैं, जैसे कि इंटरेस्ट डेवलपमेंट करें, यानी इंटरेस्ट ये जरूरी है, आपकी हॉबी हो। अगर ऐसा नहीं है तो देखें कि आपकी किन बातों में रुचि है, या अपनी रुचि बढ़ाएं, क्योंकि अपने काम के अलावा हमारे पास कोई अलग चीज होनी चाहिए जिसके साथ हम समय बिताएं। इससे आपको खुद को जानने में मदद मिलती है, जिससे आपका विकास भी होता है। और आखिरी बात है, नकारात्मक सोच से आप बचें, क्योंकि किसी भी कार्य के पहले ही उसके नेगेटिव पॉइंट पर बात ना करें। कई बार यह हमारी आदत में आ जाता है, और जिससे हमारी छवि बिगड़ती है और हम में भी कॉन्फिडेंस भी की कमी आ जाती है। अगर ऐसे ही भाव मन से आए तो उसको हटाने की कोशिश करें, नहीं तो यह आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी व्यक्तित्व विकास को लेकर, जो हमें आपको बतानी थी। हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी बड़े अच्छी तरीके से इन बातों को ध्यान में रखेंगे, ताकि हम आगे चलकर ये अपना जो व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं उसमें हम बिल्कुल सही उतरे, सही मायने में कहें कि आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। तो इसके लिए ये बात है, बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल मनीष जी, और हमें अब लगता है कि हमारी क्लास यहीं पर खत्म होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें बता दी हैं कि व्यक्तित्व विकास के लिए किन-किन बातों का ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है, जो आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं और आपकी एक अलग छवि बनाकर रखती हैं। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, कार्यक्रम भी यहीं समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है भाई लोग इस कार्यक्रम से जाने का। तो अब आखिरी में एक बात जो रह गई है वो ये है कि यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा है, हमें जरूर फोन के माध्यम से बताएं, इसका सुझाव दें। जैसा कि हमने कार्यक्रम में बताया कि अपना व्यू जरूर दें, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप अपनी बात को जरूर रखें। तो आप हमें भी इस कार्यक्रम का सुझाव दीजिए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, और बताइए कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा है, जिसके लिए हमारा नंबर है
1: 92 19 20 77 49।
0: साथियों, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं और फोन भी कर सकते हैं। साथ ही में हमारा पता भी है, जिस पर आप पत्र के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा।
0: साथियों, अब हमें दीजिए जाने की अनुमति, यानी आपकी रेडियो दोस्त वर्षा।
1: और मनीष को दीजिए जाने की अनुमति।
0: फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए
1: नमस्कार।

नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो। तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। इस कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात कर रहे थेंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसा सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी और साथ में जाने के भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था कि नहीं। देखो जिसे शादी उनकी हो रही थी उनको ने देखो भी है तो या नहीं देखो, तो क्योंकि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जात, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाती और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती और फिर देख भी की तो बातें अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपनों ने देखो कि जितनी भी कहानी अपनों ने स्त्री में सुनी हैगी उनने कोनों ने भी जानी गई कि हमने देखो हतों ने जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या कोके जैसे कि जो मानदान रहते हैंगे ब्योरे देखे आते ही, तो लड़की को देखने की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की ये कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से भी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी, तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगी और पढ़ाई को लेके भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की ये कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों देर नहीं करा थेंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहेंगे। तो आओ चला थेंगे राधापुर।

0: राम राम अम्मा।
1: राम राम।
0: क्या नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा, कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं?
1: हाँ।
0: क्या करती हैं अम्मा?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रहा।
0: आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही?
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ, 20 साल से कर।
0: अच्छा, तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कितने हैं?
1: हम मायको झांसी में है।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी में है गोविंद चौरा है, ढाल के नीचे। राज डॉक्टर आपने सुना हूँ कभी?
0: हाँ, हाँ।
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा, उन्हीं के नीचे रहते थे। आपके परिवार में कौन है? तो
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहने थे, तीन बहने थे।
0: अच्छा, तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा आते हो?
0: अच्छा, आपके घर पे क्या काम हो? तो
1: वहाँ पे तो चौका बर्तन करते सब करते हो। जगह जमीन नहीं होती, मजबूरी करते हो और आप बड़े बड़े लोगों को काम करे आते। मेरे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, हमारी अम्मा अकेली का करती।
0: हाँ,
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो थे, कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समो छोटो।
0: अच्छा, 10 रुपया?
1: हाँ, 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिलते, हमें 10 बच्चा खिलाते उनके।
0: अच्छा,
1: खाना देती वे और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपए दे देती महीना भर।
0: तो मतलब इस तरह से चलत रहता
1: है।
0: अच्छा, अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और काका काम आपने पढ़ाई कितने तक करी आपने?
1: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रहेगी, 60 साल में।
0: 60 साल में 2 साल कम रहेगी आपकी। तो हमने बचपन में काम, तो जैसे आपने बताया कि काम भी करे, लेकिन उसमें और छोटे जो बचपन होते ही, जब मान लो अपन काम करवे की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी रहा, जब तो खेलते ही खाते।
0: हाँ, तो वही खेलवे की बात हम कर रहे हैं। आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: खेल अब कंची खेल रहे, कहीं रेडी खेल रहे, जे खेल खेलते थे और क्या।

0: कंजी
1: चपट्टा खेल रहा है,
0: चपट्टा
1: ये सावन को मुझे चपेटा खेल,
0: अच्छा
1: जो खेल रहा है।
0: तो सावन में आप गीत भी गाती हूँ, खेलत में गीत, आप गीत सुनाओ।
1: हम नहीं जाना तो मैंने गीत में था।
0: अच्छा गीत ही नहीं याद है, पहले तो गाती हूँ आप।
1: अबे यार भूल गए, अब तो बुढ़ापो है, ऐसे कुछ नहीं आता।
0: इतने बुढ़ापो नहीं है आपको, लेकिन बुढ़ापो नहीं लगा था आपको।
1: नहीं बुढ़ापो काहे नहीं है।
0: तो कौन सा गीत गाती
1: हैं? कौन नहीं गाते हैं
0: आप? गाते नहीं। अच्छा आपकी सहेली कौन कौन थी?
1: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए, अब सहेली को जाने कहाँ कहाँ गई, को अंगूरी ना तो काउ को पुष्पा ना तो ऐसे सबके नाम आते सबके, कोई की कहीं शादी हो गई, कहीं की कोई की कहीं हो, अपने अपने घर चली गई सब।
0: मिलती हूँ आप लोग?
1: हाँ मिल जाते, कभी कभी इकट्ठे हो जाता, खुशी तो जो से लोग मायके में आप तो सब रहने मिला तो अच्छा
0: लगते। अच्छा अम्मा जो बताओ की आपके समय में पहनावे कौन कौन सी रहती, मतलब पैरत का कपड़ा कौन कौन सी चलती?
1: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी रहती, सो चड्डी कपड़ा की सिला के पहनते और फिर आके पहनते और फिरा कर नहीं मिली तो बिस्कुट पहन लेते, बुक सेट है ये पहन लेते, और हम तुमने फिरा कर दे रही तो भी पहन लेंगे बस, और यही पहरा हो
0: मतलब कोनो अलग से नहीं
1: है, कोनो अलग से नहीं है। तो
0: अच्छा तो अब हम आपसे बात करें, आपकी शादी कितनी उम्र में
1: हुई? हमारी अब हमें तो ध्यान नहीं है बहन, कितने उम्र में हमारी भैया थी
0: तो मतलब कछु तो अंदाजा हुई है। जब आप जाना था शादी के बारे में?
1: नहीं जानते, जब हमारी शादी हो गई थी
0: बिल्कुल नहीं जानती। अच्छा जी से आपकी शादी हो रही थी वहाँ आपने देखो तो
1: हाँ?
0: पहले से देखो तो
1: हाँ? नहीं नहीं पहले कहाँ देखा देखते
0: हाँ,
1: पहले ना कोई मोड़ी देखा तो ना कोई मोड़ा देखा।
0: अच्छा
1: देख से तो आते ही हमारे बाप माता 8-9 साल के साथ हैं, 9 साल के हमारे पिताजी गुजर गए थे, 9 साल की शादी कर रही थी।
0: अच्छा।
1: तो जिन जिनको काम करते हमारी माताई ने कही क्या 500 रुपया दे दो मोड़ी को ब्याह करने, बोली तुम्हें 10-10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो, 500 चुका। उन लोगों ने सबने 100-100 रुपया पूर्ण में दाए थे।
0: अच्छा
1: हाँ तो वही बताएंगे उठे कई में
0: 500 रुपया
1: नहीं सबसे जैसे कछु कछु लोगों ने ऐसे पुनो आती है देखे उन लोगों ने और ज्यादा दे दे वैसे ही के बिटिया को पुन ब्याह हो रहा पुण्य में दे दो पैसा।
0: अच्छा,
1: बड़े बड़े सेठ लोग
0: तो
1: सही ऐसे वहाँ ब्याह हो गया।
0: अच्छा जब आपकी ब्याह हो गया इसके बाद कितने आपकी ससुराल दे दी राधापुर में भाई है
1: ना? हाँ राधापुर
0: ससुराल है आपकी। तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपकी भाई हैंगे, जैसे पहले दिन तेल मंडप
1: पहले पहले मंडप तेल लगाओ फिर मंडप बो फिर टीका।
0: अच्छा 3 ही दिन को ब्याह हो
1: तो? हाँ 3 दिन को होता
0: तो बारात 3 दिन मिली रही थी कि एक
1: नहीं एक ही दिन नहीं 3 दिन मिली रही थी बारात
0: तेल वाला
1: दिन आ जाती नहीं आते टीका के दिन।
0: अच्छा
1: और फिर भावर मावर बराती फिर वो दिन छोड़ी जाती बारात दूसरे दिन जाती जयमाला नहीं डरी बहन हमें तो लट्ठा को सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार्किन से अपन खोलियन पे हाँ खोलियन पे चढ़ा वही को लांगा वही को दुपट्टा।
0: अच्छा
1: और जब तुम जो होट पर लाल बापो में लाइस।
0: अच्छा
1: जो सब जयमाला नहीं लड़का मड़वा घाला ना चावल मार दे।
0: अच्छा चावल जी का ढाले जाता आपको कुछ बताओ?
1: नहीं बता हमें नहीं बता।
0: अच्छा चावल को कुछ पता ही नहीं है ढाल
1: तो मड़वा के नीचे और खड़ो कर ला हमारी बुआ ने बोले चावल मार दे सब
0: के बाद
1: बस फिर बाहर चलो गो लड़का फिर पंगत मंगत होने लगे पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाओ मड़ो चढ़ो फिर
0: गाँव रहे कहाँ चढ़ो तो आपको
1: हमें पेजना चढ़ी थी 1 किलो के वो खम वज्जा
0: 1 किलो की पेजना
1: हाँ 1 किलो की पेजना और खम वज्जा और जो एक पैर थे पहने थे
0: बाजू बंद
1: हाँ भी चढ़े थे।
0: अच्छा तो
1: अब रखे हो आप हाँ की बात है
0: छे, अच्छा दे
1: छे लड़का होगा छे लड़का के ब्याह कर ले।
0: अच्छा
1: कहाँ से आ रहा
0: सही बात है। अच्छा आपकी विदा का है भाई दी
1: हमारी डोल में डोल जब डोली नहीं रहा
0: हाँ।
1: भाई में भाई थी
0: तो
1: फिर बैलगाड़ी में आए थे
0: बैलगाड़ी में आए
1: थे।
0: अच्छा इसी पहले आपने बैलगाड़ी में बैठी थी
1: हाँ ऐसे कब हम बैठ जाते लेकिन वैसे बैठ जाते लेकिन विदा होके हमारी गाड़ी गई से आई थी।
0: अच्छा बैलगाड़ी झांसी से कैसा लगा तो आपको?

0: उड़ी आपकी और बैलगाड़ी से उड़ी?
1: हाँ, बैलगाड़ी से उड़ती पहले, बता सवाई की उड़ती अमाजी का।
0: अच्छा,
1: पहले जो के वाहन कहाँ थे?
0: हाँ, पहले वाहन
1: और चा तक नंगा जाते, खेलार तक नंगा जाते। अब तो एक कदम नहीं रहा आदमी,
0: अब तो अगर तुम्हें भी जाना है,
1: अगर तुम्हें कारस देव में जाना है तो गाड़ी से
0: जाना है।
1: जाना
0: है, सही बात है। तो फिर जब आप विदा होके इतने आए तो इतने ससुराल में कुकु मिलो आपको?
1: ससुराल में सास ससुर जेठानी।
0: अच्छा, आप कितने नंबर की
1: हैं? हम दूसरे नंबर के। नानी दादो
0: नंदन की शादी हुई?
1: हाँ।
0: शादी के बाद बड़ी हती। हाँ। अच्छा, तो फिर आपके का का रस में भाई मतलब कंकन छूटा?
1: कंकन छूटो, हाथे लगे थे, दो तीन चार दिन रहे थे, फिर चले गए थे।
0: अच्छा, और खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई?
1: खिचड़ी बनाई थी।
0: तो आपने खुद बनाई थी?
1: नहीं, बना पाई थी हमने, जेठानी ने बना दी थी।
0: अच्छा,
1: और चमचा से तरवा दी थी,
0: नाम हुआ
1: तो द्वारे में और डरवा दे।
0: अच्छा, और अंडर वाली थी। तो जैसे जब आपने खिचड़ी बनाई और सबने खाई तो फिर का करने मिलो? तो
1: हमें नहीं, एक कछु नहीं मिलो तो हमें तो और पैसा रखने पड़े थे चूल्हे में,
0: वो देने
1: आए। हाँ,
0: ये उल्टा नहीं हो रहा
1: के? पहले देता ही थे, अभी भी देता मोरन के। जैसे खिचड़ी बनवा तो चूल्हे में रखवा बहु से सास लेते हुए पैसा, चाहे दस दरे चाहे ग्यारह हो चाहे एक सौ रख दे, लेकिन वो सास ले और तो पे रखत बहु।
0: अच्छा,
1: तो बेबी सास ले।
0: अच्छा,
1: जी की सास ना हो तो जेठानी
0: ले। तो जैसे पहले एक अबे एक रसम होती जूड़ा खुलते ही सास, तो आपके समय में खुलत?
1: नहीं, हमारे समय में नहीं
0: खुलत, जूड़ा नहीं खुलते।
1: नहीं,
0: अच्छा, आपकी
1: जो छोड़ा खोलते, जो
0: छोड़ा खोलते,
1: जो छोड़ा
0: भी पैसा
1: सास खोल सकती है,
0: खोल सकती
1: है, खोरसा खाती
0: सास। तो काम हाथ भूत तो मतलब
1: जब सास रे में आ जा तो जो छोड़ा खोल सकती सास।
0: कछु
1: महा तो कछु महा
0: तो। अच्छा, आपको नहीं पता?
1: छोटे आते तो कछु दे आते।
0: फिर आपके काम जब आप दूसरी बार आए अपनी ससुराल में, फिर कैसे काम कराती? जेठानी के संग मिलकर कराती या लड़ाई होती?
1: जेठानी के संग कराते, लड़ाई का एक नहीं होती।
0: कभी लड़ाई नहीं हुई आप?
1: नहीं, हमारी नहीं हुई जेठानी से, ना सास से भाई कभी
0: नहीं होती। आप सीधी हती के दो जने
1: दो एक से आते मिल के कर लेते हो बस, सबने फिर से आने होगा तो सब अलग अलग होगा।
0: अच्छा, और सासरी में का काम होती आपके? खेती?
1: खेती होती, रात से खेती होती।
0: अच्छा,
1: पहले मोटर कहाँ थी, रात ऐसे खेती होती तो रात चलाते रहते।
0: अच्छा, और जैसे जब खेती की आपने बात करी है तो आप सुबह से चक्की नहीं पी सकती?
1: चक्की पी सकते हो सवेरे चार बजे से।
0: कितने बजे उठती
1: आप? चार बजे उठ जाते, चार बजे से पी सकते, पाँच छह किलो नाच पीस लेते।
0: पाँच छह किलो रोज पीसने?
1: हाँ, रोज। तो जेठानी पी सकती?
0: तो भी कभी पी सकती आप? जैसे सुबह से उठ के पी सकती?
1: चार बजे से भी पी सकती।
0: संगे पी सकती?
1: ना, कभी संगे कभी अलग अलग पी सकती।
0: अच्छा, फिर उनके बाद चक्की पीसने के बाद काका काम फिर
1: गोबर मोबर डालते?
0: कितने गाय भैंसे
1: होती आपके? दस बारह गैया होती, गोबर मोबर डालते, झाड़ा झूरी करते, फिर एक जनी रोटी बनाने लगती, एक जनी काम करने लगती।
0: अच्छा, ऊपर वो काम कर लेती।
1: फिर कुबा पे आठ बजे तक निकल जाते, सो रात चलाते दिन भर।
0: अच्छा, वो हाथ से बहाने आते?
1: नहीं, बैलेंस से,
0: बैलेंस से, हाँ, बैलेंस से चलते
1: घर में नहीं आती लोहे
0: की।
1: सो वही चलाते रहते, कब हम स्वाद जेठानी चलाती, कब हम चलाते रहते।
0: तो मतलब लड़ाई नहीं होती आपकी वजह से? कहूँगी। अच्छा, आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा है?
1: हमारा छह लड़का।
0: छह लड़का? और लड़की?
1: लड़की नहीं है एक।
0: लड़की नहीं है एक? तो अपने लड़का को तो पढ़ाओ जो
1: हुए? हाँ, पढ़ाओ, परेशानी हाथी से कुछ नहीं पढ़ा।
0: अच्छा,
1: पाँच पाँच पढ़ा है जाइए स्कूल में बस।
0: अच्छा, सरकारी? हाँ। तो अब सबकी शादी हो गई?
1: हाँ, सबकी हो गई, सब सब नाती ने तुलन की हो गई।
0: अच्छा, नातीन की भी हो? कितनी नाती है?
1: छह नाती है, छह नातने हैं।
0: आपकी को मतलब बिलास बड़ा परिवार है?
1: हाँ, तो छह लड़का है, तो दो दो है सबके।
0: अच्छा,
1: और एक के चार है बड़े के, तीन मोड़ी है।
0: तो एक
1: मोड़ी तो आप बिरोबर हो गए, तीन ना ना मोड़ी के, दो मोड़ी मोड़ा होगा, एक के छोटी, एक के मोड़ा होगा, एक के मंजिले मोड़ा की के मोड़ी है, मोड़ा है वो।
0: बहुत बड़ा परिवार है आपको? अच्छा लगा था, तीति भान पे हुआ सब जने आ जाते हैं तो और अच्छा लगा था, है ना। तो आप सुवाटा नहीं खेलती हो?
1: नहीं।
0: कैसे खेलती आप अपने?
1: सुवाटा तो सवेरे उठ के सब जगह लीपो पोतो झाड़ो चौक पूरो बस पर खेलो,
0: गाना गाते। अब वो भी रात
1: जी
0: सब भूल गई।

0: उंगलियां भी याद करने आ गई। बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी हैं अम्मा। लेकिन एक बात और, आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही हैं आप?
1: 20 साल से ज्यादा हो गई।
0: जैसे आपने पढ़ाई 5 तक करी, तो आंगनबाड़ी में कैसे है आपकी नौकरी लग गई?
1: आंगनबाड़ी में वही लग गई थी।
0: कैसे लग गई थी? मतलब
1: पहले 4 जन्म के कागज दे थे भर के, तो सबने 200 रुपया में लगते।
0: अच्छा।
1: तो सब जनन ने कही 200 रुपया में का खा रहे, हमें नहीं करने।
0: हाँ।
1: हमें नहीं करने। सुखेर बोली चाची तुम लग जाओ, अभी 200 में रह कभी ज्यादा भी हो सकत।
0: हाँ,
1: 350 में लगते हमें 200 रुपया।
0: धीरे धीरे
1: फिर हम इनके ससुर बोले लग जाओ हम दे दे वो करे, तो मैं 2-4 पहली नाच खा भी के लाने बजका कर। इनके ससुर दे देते 2-4 पहली नाच, हम पानी भरे आते इनको लगे रहे इनके, तो पानी तो अभी भी अभी छोड़ दो हमने बनक नहीं लगे।
0: अच्छा।
1: जब से हमने आंगनबाड़ी करी जब से पानी भर इनको उन्हें खावे पीवे की परेशानी से, जैसे नहीं आ तो जो दे तो सकते खावे, नहीं करते तो को दे रहे।
0: सही बात है,
1: दे रहे तो को भी ना करे।
0: और आज आपको कितनी मिल जाती, मतलब आपको घर चला भी ला के मिल जाता आपको?
1: आप 5,000 होगा ये 2-3 महीना, नहीं 2,500
0: लगते,
1: 350 है हमारे, फिर 1500
0: भाई। अभी तो फिर धीरे धीरे बढ़ते चले गए आपके पैसा, बहुत बढ़िया। आपके पूरे जीवन को अनुभव कर रहा हो, मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने का सीखो?
1: हम जो खेती किसानी सीखी हो आंगनबाड़ी चल रही फिर से जाकर।
0: नहीं, आपको क्या लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दें?
1: चौपे में तो महत्व देखो, आप सोच रहे हैं आदमी के जब पढ़ लिख लेते तो और अच्छे हो जाते, लेकिन जब पैसे ही नहीं है तो क्या पढ़ा लिख रहे हैं।
0: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है अपने जीवन के।
1: अब जैसे पेट को तो रोटी नहीं है, पढ़वे की का सोच रहे बताओ?
0: सही बात है। लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल, फ्री किताबें मिल रही है, ड्रेस मिल रही
1: है। लेकिन मिल रहा पहले कहाँ मिल रहा?
0: हाँ, पहले नहीं मिला तो, लेकिन अब मिल रही तो अभी के नाम में पढ़ाई चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो अम्मा और का वो चाहती हूँ आप अपनी तरफ से,
1: और का
0: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय पे, उनके लाने का संदेश दे वो चाहती है अपनी लड़की को पढ़ाए चाहिए कि नहीं?
1: अपनी को तो सब हमारी मोनी सब 8-8 पढ़ी, नातनी नाती पढ़े
0: तो पढ़ाए चाहिए।
1: हाँ, सब पढ़ रहे, को पढ़ रहा हो को बड़ी बड़ी हो गई सब, 7-7, 8-8 में करके छोड़ दो, ब्याह कर दे नातन की।
0: बहुत बढ़िया,
1: आप को पढ़ दो, अब दो नाती पढ़ रहे।
0: चलो बढ़िया अम्मा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने पूरे जीवन के बारे में हमें बताओ, ये गिलाने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

अपनी बात है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे। दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन और सुन रहे थे लक्ष्मी जी को, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जानो है वो कि इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो है वो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनको बचपन कैसो बीतो है वो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था, ये सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई है कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता

शिक्षिका के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी लेकिन नौकरी इनकी लग गई, जब बहुत अच्छी बात हैगी। कहे कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढती, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, होते भटक रहे हैंगे। तो ऐसे अपने कहवे को जो ही मतलब है वो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगा थेंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उकी शादी कर दो, या फिर बड़े हो के सिर्फ उनको चौका वासन करने आ है वो, घर को काम ही देखने आ है वो। लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी। ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैंगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपने परिवार चलाने में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेना पड़ता। तो देखो अब अपना समय होते है वो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को। लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो, इमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गाँव में या आपके आस पास कोनो ऐसे लोग हैंगे या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप उन्हें सुनबो चाहेंगे, तो ये लाना हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारा पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। और साथ ही आप हमें अपनी राय सुझाव फोन के माध्यम से भी दे सकते हैं, साथ में आप हमें SMS भी कर सकते हैं, और अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई है, क्या आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैं, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सकते हैं अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो आप अपना समय होते हो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दे जावे की इजाजत। अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार, और चला चला सुनो आप गीत खो जी खो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और इस कार्यक्रम के माध्यम से खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक विशेष वार्तालाप को

सुनेंगे, क्योंकि अपनी बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा पानी गिर गया है और ऐसे में हमारे किसान साथियों को क्या समस्या आ रही है, उस पर भी हम ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत करेंगे। साथ साथ में हमारे किसान साथी, हमारे जो उजान पठा के विजय जी हैं, उन्होंने सवाल किया था कि हमारे जो धान की खेती, उन्होंने कुछ जगह हमारे धान की खेती डूबी हुई है, तो उसमें नैनो खाद देना चाहिए।

इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती। बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और खेत खलियान कार्यक्रम में साथियों, हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और समय समय पर मौसम आधारित जानकारी देते हैं। किसानों को किस तरीके से खेती में अपनी परिवर्तन करना चाहिए, क्या कुछ किस मौसम में कौन सी फसलों को लगाना चाहिए, कौन से बीज लगाना चाहिए, बीज उपचार की विधि, तमाम प्रकार की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी। आज हम जो आप देख रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र की बात करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, बहुत सारे हमारे किसान साथियों की फसल भी उन्होंने लगा दी है लेकिन बहुत सारी फसल नष्ट भी हो गई है। आज हम देख रहे थे, सुन भी रहे थे कि कई शहरों में अत्यधिक बारिश होने के कारण बहुत सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। कई कई किसान साथियों ने अपनी फसलों को बो भी नहीं पाए हैं, लेकिन अब जायज के चूँकि अब समय आ रहा है कि हम कौन सी फसल लगाएं। अगर सब्जियों की बात करें तो कौन सी ऐसी सब्जी है जो इस मौसम में लगा सकते हैं, तो आज हम इस मौसम में कौन सी हम लोग सब्जियों को लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी पद्धति है जिसको हम अपने क्षेत्र में अपने खेती में अपना सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर, और सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम।
0: तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि इस मौसम में चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है और इस मौसम में किसान साथी भी परेशान हैं, तो कौन सी ऐसी सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं ताकि उनकी

0: जो आजीविका है वो चल सके।
1: जी सर, जैसा कि सर ने बताया है कि इस मौसम में सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, मतलब ज़रूरत से 2 गुनी तक बारिश हो गई है, जिसकी वजह से अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में लगी हुई सब्जियां और अदर फसलें भी सभी को नुकसान हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ, कई फसलें तो पूरी तरीके से नष्ट हो गई और कुछ फसलें जो हैं जो 70 से 80% तक नष्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या बाजार में जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। आप किसान भाइयों को इसमें सुधार के लिए कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा हम फसलों को नए तरीके से लगा सकते हैं और उनको अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे किसान साथी सब्जियों को लगाकर उत्पादन अधिक ले सकते हैं। तो यही दिमाग में सवाल चलता है कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको इस मौसम में हम लोग लगा सकते हैं, और इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरीफ सीजन जो अभी चल रहा है, जिसको हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, इसमें क्या है कि बारिश बहुत लंबी चली गई है, जिसकी वजह से फसलों की बुवाई की विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करके, क्योंकि जो सब्जियां हैं उनमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मतलब हम पहले सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उसको हम दूसरी जगह मेन खेत में लगा सकते हैं।
0: सब्जियों को किस तरीके से लगा सकते हैं?
1: जी सर, सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि ऐसी फसलें जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे, इनकी जो पौध होती है वो हम पहले नर्सरी में या बोल सकते हैं हम प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर में हम तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अभी हमारे खेत तैयार नहीं है, तो फसल तैयार नर्सरी तैयार होने में भी लगभग 30 दिन का समय लगता है, तो चूंकि हमारे पास 30 दिन एक्स्ट्रा हैं, उनका हम कहीं छोटी जगह में पौध तैयार करें और खेत का अपन प्रबंधन साथ साथ में करते रहें, और जैसे ही हमको मौसम 1 या 2 दिन का खुला दिखे और जैसे ही हमारी सीडलिंग 20 दिन से ऊपर की हो जाए, मतलब यह उसकी हाइट जो होती है लंबाई वो 10 सेंटीमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर के बीच में हो, उस टाइम हमें रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। तो हम खेतों में अपना जिस दिन खुला समय मिले उसी दिन हम खेत में रोपाई की क्रिया को करें।
0: जी। और रुपाई की क्रिया की अगर बात करें तो हम किस तरीके से रुपाई, चूंकि एक विधि रहती है रुपाई की, तो कौन सी ऐसी
1: जी
0: विधि
1: सर,
0: है, कितनी दूरी पे उसको लगाना चाहिए?
1: जी सर, जैसे हम अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग दूरी तय की गई है मीटर के हिसाब से, क्योंकि अभी क्या है कि बरसात का मौसम है तो ज्यादा बारिश की वजह से खरपतवार की भी संख्या ज्यादा बढ़ती है खेतों में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम फसलों की थोड़ा दूरी होती है वो एक लाइन मेथड में हम करें, क्योंकि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी बराबर हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है कृषि क्रिया करने में आसानी रहती है। जैसे टमाटर के लिए हम जनरली 60x60 पे लगाते हैं, मिर्ची पे हम 60x45 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम पौधे को रोपण कर सकते हैं, और भट्टे में भी हम 60x60 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम भट्टे को रोपण कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और इसमें अगर लगाने की बात करें तो कौन से खाद बीज अपन को लगाना चाहिए, कितनी मात्रा में उसको, और किस तरीके से बीज उपचार करना चाहिए?
1: जी सर, सर ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे कि बरसात के सीजन में खरपतवार की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, और चूंकि हमारे जो किसान भाई हैं ना उनके लिए अभी खाद की भी समस्या बहुत सारी हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको खेतों में यूरिया नहीं देना चाहिए अभी। यूरिया क्या करता है कि किसी भी फसल या खरपतवार दोनों को ही जल्दी से उनकी बढ़ोतरी कर देता है ग्रोथ में, तो उसको हम रोकने के लिए हम उसकी जगह क्या नाम है MOP और DAP का हम उपयोग कर सकते हैं, वो भी आधी मात्रा का, जिससे क्या है कि हम इसको टॉप ड्रेसिंग रूप में या बुवाई के साथ साथ बेसल डोज के रूप में आधार खरपतवार आधार उर्वरक के रूप में हम उसको पौधों के साथ में ही दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। तो और इस खास तौर पर बरसात के मौसम में किसान साथियों किस तरीके से देखभाल करना चाहिए?
1: जी सर बिल्कुल, अभी क्या होगा जैसे जैसे खरपतवार ज्यादा आएंगे तो खेतों में क्या होगा अभी मौसम कीड़े भी ज्यादा आएंगे, उसके साथ साथ बीमारियों की संख्या भी बढ़ेगी। अब चूंकि हम सबसे पहले अभी सीजन चल रहा है सोलनेसियस वेजिटेबल का, जैसे टमाटर, मिर्ची, भटे और भिंडी, अब इनमें होता क्या है कि सर सबसे ज्यादा फ्रूट बोरर, और अभी पत्तियों पे आपको लीफ कर्ल वायरस दिखेगा, तो ये क्या होता है जैसे मौसम ठंडा होता है तो इनका अटैक बढ़ जाता है, तो इनको रोकने के लिए हम समय समय पे या तो बीज को उपचारित करते रहना चाहिए, और यदि आपकी खेत में ट्रांसप्लांटिंग हो गई है तो हम इस

0: के लिए समय समय पे हम M45 का स्प्रे कर सकते हैं हम।
1: बिल्कुल। और जिन किसान साथियों की सब्जी हो चुकी, कुछ कुछ किसान साथियों की बची हुई है सब्जियां, तो उसमें खास तौर पर अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी बीमारी फैल रही हैं और बहुत सारी सड़न हो रही है, मतलब सड़ रही हैं सब्जियां, तो क्या करना चाहिए उन किसान साथियों
0: बिल्कुल
1: को?
0: सर, अभी क्या है, जैसे सर ने बताया कि खेतों में पानी की ज़्यादा होने की वजह से सब्जियां की रूट गलन और पत्तियों में सड़न पैदा हो रही, जिसको हम पीथियम एपेंडिडर्मेटम एक बीमारी होती है फंगस के थ्रू, ये फैलता है। तो हम इसको उपचार के लिए हम समय समय पे कार्बन डाइऑक्सीक्लोराइड COC, जिसको हम बोलते हैं, जिसका 1% सोल्यूशन, और साथ में ही हम मैनकोजेब या M45 का 1% सोल्यूशन हम समय समय पर 7 दिन के अंतराल पर 2 से 3 स्प्रे कर दें, तो इससे तुरंत उस डिसीज को आप रोक सकते हैं या प्रबंधन कर सकते हैं हम उसका।
1: जी, बहुत बढ़िया जानकारी। और साथ साथ में हमारे किसान साथियों को ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिन किसान साथियों ने खेती चूंकि नहीं कर पाई है, वो आगे चलकर किस तरीके से खेतों की अपनी तैयारी कर सकें।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी हम रेनी सीजन या खरीफ में हम थोड़ा सा लेट हो गए, वो भी बरसात की वजह से, तो हमारे जो आने वाला जो सीजन है वो खरीफ का होगा, क्योंकि खरीफ में सब्जियों का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम खेत को प्री प्लान तैयार करें, और हम अगेती फसलें जैसे फूल गोभी के पत्ता गोभी, और इसी के साथ साथ हम टमाटर को भी फिर से ले सकते हैं खेतों में, और साथ साथ में अभी धनिया का उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको अगले सीजन में।
1: एक चीज और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि चूंकि भिंडी भी हमारे किसान साथी लगाते हैं, लगाए भी हैं, क्या करना चाहिए उन किसान साथियों को?
0: जी सर, जैसा कि हमने बताया था कि इसके अलावा भी भिंडी एक महत्वपूर्ण फसल है इस सीजन के लिए, क्योंकि उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं होती है, तो उसके लिए किसान भाइयों को जो बीज है वो आपको वायरल फ्री बीज अभी मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारी उसकी वैरायटियां हैं, तो हम उसको ले सकते हैं। जैसे हम बात करें अरका नाम का वैरायटी की, या पूसा भिंडी 5 की, या आपका पूसा मखमली वैरायटी की, या काशी लालमा वैरायटी, ये भिंडी में सर्वोत्तम उत्पादन के साथ साथ ये वायरस फ्री वैरायटी भी हैं, जो चूंकि भिंडी के उत्पादन को बढ़ाती हैं, और ये जल्दी से जल्दी इसमें पिकिंग आ जाती है बाकी भिंडी की वैरायटी की अपेक्षा।
1: जी। और कितने दिनों में मतलब सब्जी हमने तैयार हो जाती है?
0: भिंडी क्या है सर, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, मतलब ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अगर भिंडी को ट्रांसप्लांटिंग लगाने के तुरंत 45 दिन बाद हम इसकी पहली पिकिंग खेत में ले सकते हैं, और ये पूरी जो फसल का ड्यूरेशन है वो 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है आपका। तो
1: अच्छा,
0: चूंकि जो मौसम की वजह से ड्यूरेशन छोटा रह गया, उसमें आप पूरी फसल भिंडी की ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी जो हमारे खेत कल्याण कार्यक्रम में दी जा रही है, वो बेहद उनके लिए फायदेमंद भी होगी और हमारे किसान साथियों के लिए एक नई पद्धति के रूप में अपने किसान साथी अपने खेतों में लगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, ताकि उनकी आजीविका को हम बढ़ा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद किसान भाइयों।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अभी आपने डॉक्टर देवेंद्र जी को सुना, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने सब्जियों को लेकर दी है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी तैयारी कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी है जो अपने खेतों में वो लगा सकते हैं, कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम विभिन्न प्रकार की पद्धतियों को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम अपनी खेती को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मुनाफा हमारे किसान साथियों को अधिक होगा। और हमें वैज्ञानिक पद्धति से बात करनी चाहिए और खेती भी करनी चाहिए, साथ साथ में जो सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो स्प्रिंकलर को लेकर, ड्रिप को लेकर, तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसका भी हमारे किसान साथियों को लाभ लेना चाहिए। हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9219207749, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आज आप भेजना चाहते हैं तो पत्र व्यवहार का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से भजन को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम आसपास। जी हाँ दोस्तों, आसपास कार्यक्रम में अपन आप आसपास को कवरेज करते हैं, जो अपने आसपास में चल रहे गतिविधियां हो रही उनको अपन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि जो अपने पुख नक्षत्र है, तो पुख नक्षत्र में कई गाँव के

लोग आउट हैं, कई जगह से लोग बाग आउट हैं, सो उनसे उनकी राय जानी है पन्ने के वे काय खिलाने आए हैं और कब से आ रहे हैं। सो दोस्तों ऐसे भैया ब्रिजकिशोर जी आए हैं जो कुगा गांव से आए हैं। सो दोस्तों अपन ब्रिजकिशोर भैया जी से मिले हैं और उनसे जाने कि भाई कब से पुख नक्षत्र में आ रहे हो, पुख नक्षत्र को क्या महत्व है और ये कौन सी श्रद्धा भाव से आ रहे हैं। सो दोस्तों भैया ब्रिजकिशोर जी से अपन जाने इन बातें को। और दोस्तों ब्रिजकिशोर भैया जी से मिलने से पहले अपन एक बढ़िया से गीत को सुनते हैं और गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।

0: देखो दोस्तों, जो सुनो अपन सब जन ने गीत और गीत को आनंद लो है, गीत खुंगा रहे थे राजकुमार त्यागी जी और उनके संगी साथी। आप दोस्तों एक क्रम में अपन गीत के संगे संगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और कार्यक्रम में मिलते हैं भैया ब्रज किशोर जी से जो कुगा गांव से आए हैं। सो दोस्तों आओ भैया जी से जाना थे उनको नाम पतो और जी कब से पोखरा क्षेत्र में आ रहे हैं। सो आप पहला तो अपना नाम पतो बताओ, क्या नाम आपको? ब्रज किशोर जी। कहाँ के लिए विवाह हैं अपन? कहाँ के लिए विवाह हैं अपन?
1: हाँ,
0: कौन सा गांव?
1: कुगा गांव।
0: कुगा गांव जो कितने पड़त अपने कुगा गांव?
1: मऊ के बातर।
0: मऊ के बातर पे पड़त। अब अपन बात करें पुख नक्षत्र की, तो आप कितने साल से आ रहे पुखन में?
1: ब्लडन के आ रहे।
0: अच्छा ब्लडन।
1: जो जो भी नहीं है पहले हमारे बंद के।
0: हाँ
1: अब जो है तो जब जब मिलू तब आ जा।
0: तो आप जैसे इतने आउट पुख नक्षत्र में

0: उसी श्रद्धा लेके आउ कि हमारा कुछ कोनो काम होना चाहिए या फिर हम तो भगवान के दर्शन करबे के लाने आउ
1: दर्शन के लाने आउ कि हमरा तो खुशी है कि भगवान के दर्शन करे हम अपनी मेहनत से तुम सहारा दीजिए बस।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि मतलब हम मेहनत करें और दर्शन करबे के लाने आओ आपको सहारो है। चलो बहुत अच्छी
1: हम खेती में अपने काम में भी मेहनत करें तो हमें सहारा दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल उसमें लाभ होना चाहिए हमारे अच्छी होने पूर्ति होना चाहिए।
1: बात है
0: क्या बात है सो एक लाने आप
1: जाओ कि तुम गलत माया दो ना हमें जो कछु नहीं चाहने।
0: अच्छा
1: हमें तो अपनी पसीना लाओ
0: जो हमें मेहनत को फल चाहने
1: मेहनत को हमें गंगा माई दे दो।
0: अच्छा
1: तो गंगा माई से हम सब कछु कहें।
0: बिल्कुल सही बात है। तो आप जो इतने एक दिन से आ रहे तो अब तक आपने भगवान से कोनो अर्जी लगाई कि भगवान हमारा काम जो हो जाए तो हम
1: लड़ाई से हमारा हो जाए।
0: अच्छा लगाई से हो जा रहा। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो कितनी बढ़िया बात है कि अर्जी लगाई से हो जा रहा।
1: और देखो हाँ। एक बच्ची के लाने लगाई थी।
0: हाँ
1: है तो लला के थे।
0: अच्छा
1: हमसे बच्चा बहुत हूँ।
0: हाँ
1: वो हमारी अर्जी जा रही थी हम मोड़िए से हम अपनी जायदाद में इसके नकाय पावे तुम इतना सहारा है जो कि हम तुम्हारे बदन अपने मेहनत के बाद मोड़ी
0: निपटा दे उनके ब्याह
1: बहुत अच्छी अच्छे घायल में पहुंची।
0: अच्छा
1: निपटा दें।
0: हाँ, हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के जो आपने इतने प्रयास करो भगवान ने आए अपनी श्रद्धा रखी आपको सफलता मिली है और एक क्रम में जैसे आप घर से चलत तो का आपको पहला से जो पत्रत के हम जा रहे या फिर आपको ऑटोमेटिक इतयावे को प्लान बन जाते भगवान खुद ही बुला ले
1: खुद खबा का आदे
0: है
1: खुद खबा का आदे से पोखर को।
0: हाँ
1: देखो पोखर आ रहा है।
0: हाँ
1: तो देखे कही के हाँ। खुद खबा का आदे से वही अपन कैलेंडर में देखो।
0: हाँ
1: तो फलाए तारीख का है
0: पोखर।
1: हाँ तो अपने वही तारीख का चल रहा है अपने पास जो है वो कहाँ है।
0: अच्छा जैसे आदमी पोखर में कहे बेसी का नहीं इस पोखर की कछु ज्यादा महत्ता महत्ता है का
1: जब तो आउट आदमी ना तो आदमी जाए कहाँ रोजी ना हो जाए
0: पुख को काय महत्व है ऐसो के कौन से
1: जब पोखर में भी आए है तो महत्व हो जी जब पोखर पोखर भी आए है थे
0: भगवान जी। अच्छा पोखर पोखर आए थे भगवान जाकर तो यही से आप और भी पोखर में आप
1: पोखर में।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। और एक क्रम में जैसे के अपने थे आउट तो खाना पीना का घर से सब ले आओ तो व्यवस्था का से बना लिया
1: मन से अपना खाना पीना बना लिया।
0: अच्छा
1: तो भगवान के दुआ बट रहा हो अपने जी हो तो ले ले बेटा गाड़ी का भगने आप लोग खाना पीना ले आप लोग खाओ बस।
0: चलो अच्छी बात है। तो भगवान जी कुल मिला के अपनी जो श्रद्धा है वह पूरी करते थे आज से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपने देखो कितनी अच्छी बात बताई किलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दादाजी।
2: देखो दोस्तों जयते भैया ब्रज किशोर जी जो कुगा गांव के रेवे बाय थे दोस्तों इनसे अपन ने कितनी अच्छी बातें जानी हैं और भैया जी ने बहुत ही अच्छी तरीका से अपनी बातें को बताई हैं कि हम कब से आ रहे हैं और का का हमारी मनोकामनाएं पूरी भई हैं। सो भैया जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद इनने तो कीमती समय निकाल के अपन को दो। अब दोस्तों एक क्रम में आप और कह रहे हुए कि माता दीन भैया बहुत टाइम से बातन में लगे हैं और मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं कर रहे। सो दोस्तों आप मनोरंजन के लाने सुनते अपने एक बढ़िया से गीत को और गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन की संग में और सुनत रहो जो कार्यक्रम आसपास।

बिल्कुल दोस्तों, दशरथ राजकुमार नजर तो है लग जाएगी। देखो कितना प्यारा जो गीत सुनो अपन ने, और गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया मिथिलेश कुमार जी। अब दोस्तों मिथिलेश कुमार शर्मा जी के गीत के बाद हम आप सब जन को जो बता देवे के आज को अपनो ये कार्यक्रम आसपास से जाबे को समय होगा है, सो हमें दो ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति। अपनी तपनी फिर ये मुलाकात है कार्यक्रम में ए बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

सावन की तीज आई घनघोर घटा छाई, सावन की तीज आई घनघोर घटा छाई। मेघ

देखत ही देखत ही हर सा गई जो बगिया

ਵਾਲੀਆਂ ਸਵੇਰੀ ਪੰਖ ਪਸਾਰੇ ਕਲੀਆਂ ਸਵੇਰੀ ਪੰਖ ਪਸਾਰੇ।

कबूल कबूल करते है भोरा पासत मेघ नचत है मोरा पासत मेघ नचत है भोरा रस रस में रिस आ गई जब बगिया कैसे रस रस में

चढ़ गए चतुरंगी पर रस में धुल पे उदय चंद्राय। गज मनसुख पर मलखे चढ़ गए सारी लड़का भय सवार सज गए।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: राम राम
1: राम
0: भैया।
1: राम जी। राम राम। कहाँ से?
0: मैं राजू यादव, ग्राम उपरहका श्रीरामपुर डेरा, सरीला राठ मुस्करा, हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
1: जी राजू भैया, कैसे हैं आप?
0: सर जी, हल्की सी बारिश हो रही है, बगीचे
1: हाँ,
0: में बैठे हैं और
1: क्या
0: रिमझिम
1: बात है।
0: रिमझिम बारिश का
1: रिमझिम
0: आनंद
1: रिमझिम
0: ले रहे
1: बारिश का आनंद
0: हैं।
1: ले रहे हैं आप?
0: जी जी
1: अरे
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल सही है, बढ़िया है, लेते रहो आनंद।
0: सर जी, गाना सुनना चाहते थे,
1: जी
0: तो
1: जी बताइए बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
0: उसका सुना दीजिए। मूवी का नाम तो गिरफ्तार है, गीत के बोल होंगे। आना जाना तो लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, क्योंकि इस समय हमारे कुछ बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं जहां पानी भरा हुआ है, तो
1: बिल्कुल
0: दुख
1: बिल्कुल
0: है, दुख के साथ फिर सुख आएगा।
1: बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप,
0: जी,
1: बहुत अच्छी बात कही आपने।
0: और हमारे हेलो फरमाइश एक का ग्रुप के श्री गौतम राय भोले जी हैं,
1: जी
0: नितिन वर्मा जी हैं,
1: जी
0: तेज चंद्र अग्रवाल जी हैं, सतीश रघुवंशी जी हैं,
1: जी
0: राजेंद्र गंगवार जी हैं, राम शरण विश्वकर्मा भैया हमारे इस समय आपका कार्यक्रम लाइव सुन रहे हैं।
1: आ क्या बात है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से?
1: विनयत्रा छत्तीसगढ़ से योगेश जांगड़े बोल रहे हैं।
0: जी योगेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं, अच्छे हैं
0: चलो, बहुत अच्छी बात है, अच्छे ही रहना चाहिए
1: जी।
0: जी। और बताइए,
1: बाकी सब ठीक है।
0: सब बढ़िया है
1: हाँ जी,
0: जी? क्या करते हैं राखी जी?
1: योगेश जांगड़े बोल रहे हैं
0: अच्छा,
1: भैया। खेती
0: योगेश जी क्या करते हैं आप?
1: बाड़ी करते हैं
0: अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं।
1: जी।
0: तो इस मौसम में क्या बोते हैं खेती में?
1: धान जी
0: अच्छा, धान लगाते हैं। चलो बढ़िया है। तो धान लग चुकी है अभी के?
1: हाँ, अभी तो आधा सीजन निकल गया है 2 महीने का
0: हाँ,
1: जी।
0: तो बड़ी बड़ी हो गई हुई है धान तो।
1: हाँ जी, मतलब अभी मध्य का समय है जी।
0: हाँ, चलो बढ़िया है। और गीत कौन सा सुनेंगे आज अपन?
1: फिल्म संजोग से सुनवा दीजिए, यशोदा का नंदलाला ब्रिज का उजाला है जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और सब बढ़िया है?
1: हाँ जी
0: चलो, बहुत अच्छी बात है।
1: जी धन्यवाद।

0: जी कहाँ से?
1: मोहम्मद हामिद बोल रहा हूँ, जिला विदिशा मध्य प्रदेश से, गांव है अकबरपुर।
0: जी, अकबरपुर से।
1: जी
0: जी, और कैसे हैं मोहम्मद जी?
1: बहुत अच्छे हैं। बारिश कैसे हो रहा है आपकी?
0: हमारे यहाँ बारिश फुन फुन हो रही है, अभी तो थोड़ी छोटी छोटी बूंदें।
1: अच्छा, बुआई मारू कर लगी आपने?
0: ब्यारू नहीं कले हुए तबे।
1: भोजन हो रहा है क्या आपके?
0: हाँ, शाम को होत ब्यारी और सवेरे होत कलेऊ।
1: अच्छा, कलेज हो गई।
0: हाँ,
1: हाँ
0: सवेरे बोलते हैं कि कलेऊ हो गो और
1: हाँ
0: शाम के बोलते हैं कि ब्याई हो गई कि नहीं हो गई।
1: अच्छा, सब मंगल है। अच्छा,
0: सब मंगल है, बिल्कुल बिल्कुल मंगलमय है।
1: फुल फुल बारिश हो रहा
0: हाँ,
1: होगी।
0: फुफुर बारिश हो रही है।
1: अच्छा, हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है। हाँ,
0: अच्छा, अरे
1: तो
0: चलो बढ़िया है। तो आप
1: बहुत वाली कृपाया हो गए हो।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: बारिश आज हो रही है, 4-5 दिन हो गए। हाँ,
0: अच्छा
1: मक्का सोयाबीन बो है। हाँ,
0: अच्छा फसल में मक्का बो आपके यहाँ?
1: मक्का वो बे है, वो सोयाबीन भी बो बे है।
0: अच्छा, सोयाबीन भी बोके बोवे।
1: हाँ, दोनों भाई वही पर दो पड़ गा।
0: तो अबे मक्का में भुट्टा तो निकले नहीं होंगे,
1: अरे भजनिया और बाला हिट गई,
0: हैं?
1: बाला और भजनिया हिट गई,
0: अच्छा,
1: और सोयाबीन में जगह छटक गए।
0: जगह लग गया सोयाबीन में।
1: हाँ, जगह छटक गए।
0: चलो बहुत अच्छी बात है,
1: हाँ
0: तो अच्छे फले हैं। सुन,

0: जी, अब ऊपर वाले कृपा है,
1: बिल्कुल
0: सोयाबीन
1: सही बात है, अपने तो
0: सोयाबीन बो तो पल्लो पर पानी तेज लगाओ, और
1: अच्छा
0: का कारण वो तो ऊपर वाली कृपा है।
1: बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो आज अपन गीत कौन सा सुनेंगे?
0: हाँ, फिल्म को गाना अच्छे सुनवा दो तुम तो, बारिश को गाने सुन सुनवा दो।
1: अच्छा बारिश का
0: हाँ, जो कुंडली का मिल जाए वो,
1: गीत के बोल बता दो जरा।
0: अरे गाने के बोल तो आ नहीं रहे, लेकिन मोरा को सुनवा दो तुम तो, टिप टिप
1: अच्छा
0: बरसा पानी,
1: टिप टिप बरसा पानी,
0: हाँ जय सुनवा दो तुम
1: बिल्कुल
0: तो।
1: सही बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने देखो फोन लगा लो, आपकी फरमाइश भी हो गई।
0: जी, कल हम तो यादें कर लेते हैं।
1: नहीं, बिल्कुल जरूरी है, देखो ब, ब, संगीत भी अपने स्वास्थ्य के लाने अच्छा हो।
0: जी सोमवार को भी लगाओ तुम,
1: हाँ हाँ सोमवार को भी आपने लगाओ तो।
0: हाँ, और अभी आज बुध को भी वही बात।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है,
0: हाँ, अच्छो हो।
1: हाँ बढ़िया बढ़िया सही
0: हाँ
1: बात है।
0: जी, हाँ
1: चलो ठीक है, तो अपन गीत की ओर चलें अब।
0: चलो, अब बात खूब बात हो गई
1: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार।
0: जी, नमस्कार।

0: हेलो सर जी, नमस्ते जी।
1: नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। कहाँ से
0: महाराष्ट्र, मोहन सिंह ठाकुर।
1: जी? मोहन जी, कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है, खेत में बैठे हैं।
1: हाँ, क्या बात है, खुली हवा का आनंद ले रहे हैं?
0: हाँ सर जी, महाराष्ट्र में पानी नहीं है ना कितने दिन से। अरे
1: ओहो, अच्छा, आपके यहाँ महाराष्ट्र में पानी नहीं है?
0: रे सर, क्या बोलना, हमारे सोयाबीन सूख के जा रहे हैं सर, पानी नहीं है।
1: ओहो,
0: 15-20 दिन से पानी आ जा बात नहीं है।
1: अच्छा,
0: हाँ सर जी,
1: देखो तो कुदरत का क्या करिश्मा है, कहीं बाढ़ है, कहीं तूफान है, कहीं बारिश नहीं है।
0: हाँ कई हो रही है कई नहीं हो रही। महाराष्ट्र में तो कितने दिन अभी सोयाबीन को जो फलियां लग रहे हैं तो वो पकड़े नहीं सर जी। उनको नीचे से प्रोटेक्शन क्या बोलते हैं वो नहीं मिल रहा है उनको,
1: हाँ,
0: बोले तो पानी नहीं मिल रहा है ना
1: सही
0: ज्यादा।
1: बात है, सही कह रहे।
0: आप पानी का तो इतना बेहाल है कि पूछो मत। अभी किधर पानी हो रही है, तुम्हारी इधर बहुत बरसात हो रही है, मगर अभी मोबाइल पे भी आ रहा है वो कहाँ वो बाढ़ तालाब
1: बिल्कुल,
0: फूटा है, पानी आ रहा है, गते नदी नाले एक हो गए।
1: हाँ सही कह रहे हैं आप, यहाँ तो
0: और
1: पानी
0: किधर
1: बहुत है।
0: पानी हो रहा है तो किधर नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में पहले बारिश हो गई, अभी बंद हो गई महाराष्ट्र में। हाँ सर जी,
1: चलो अब देखो, वो तो कुदरत के हाथ में है सब खेल।
0: सब सब सब गुजरा। ये बोलने की बात है सर जी, आप किसी से अगर सामने वाला अगर हालत पूछेंगे तो उनको बोलना पड़ता है ना।
1: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात कह रहे
0: हाँ,
1: हैं।
0: अपने हाथ में क्या है, ऊपर वाले के हाथ में जो
1: हाँ
0: कुछ
1: सही
0: है।
1: कह रहे, सही कह रहे।
0: और एक गीत है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा और जिसमें मिला है लगे हुए सा। आप
1: जी,
0: किधर हो रहा है तो किधर पानी के ऊपर ही
1: सही बात
0: छाए,
1: है,
0: वैसा
1: सही
0: कुछ
1: कह रहे
0: नहीं है
1: आप, बहुत
0: मगर।
1: बढ़िया है, सही कह रहे आप।
0: हाँ सर जी,
1: हाँ चलो, सही है,
0: थैंक यू, धन्यवाद सर जी,
1: धन्यवाद
0: थैंक
1: धन्यवाद आपको फोन लगावे के लाने, ऐसे लगा लेते करिए आप। है
0: यू, धन्यवाद। हम सुन रहे कार्यक्रम सर
1: हाँ,
0: जी।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, चलो गीत सुनते हैं अपन। करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: माताजन भैया,
1: भैया नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार। आपकी आवाज रेडियो पर बिल्कुल नहीं आ रही है, श्रोताओं की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है। हाँ,
1: अच्छा,
0: अपना आवाज थोड़ा वॉल्यूम दीजिए अपने आवाज को। श्रोताओं
1: जी
0: की आवाज अच्छी आ रही है?
1: अच्छा, श्रोताओं की आ रही, हमारी नहीं आ रही।
0: नहीं, आपकी बिल्कुल नहीं आ रही है।
1: ओहो, ये तो देखो गड़बड़ वाली बात है। अब आएगी?
0: अभी तो गाना चल रहा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है।
1: अच्छा, गाना हमने अब बंद कर दिया। देखिए अपनी तपनी बात हो रही।
0: आवाज अभी नहीं आई।
1: अब आएगी, थोड़ा लेट पहुंचती है नेटवर्क के माध्यम से।
0: हाँ, थोड़ी सी आई आवाज। हाँ,
1: आई
0: थोड़ी सी और बढ़ाइए।
1: ले ओ। अब देखिए,
0: हाँ, थोड़ा सा आ गया है लेकिन श्रोताओं की ज्यादा आ रही है, आपकी कम आ रही।
1: अच्छा, श्रोताओं की ज्यादा आ रही, हमारी कम आ रही।
0: हमारी आवाज ठीक आ रही है, आपकी कम आ रही। चलिए
1: अच्छा चलो ठीक, हमने और बढ़ा दी।
0: फिर रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। परम
1: चलिए, तो अपना नाम बता दीजिए।
0: आदरणीय माता दिन भैया, सादर सप्रेम प्यार है, नमस्कार। मैं
1: नमस्कार।
0: आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। भैया जी, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया है शारदा भैया।
0: मैं भी अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और रिमझिम रिमझिम फुहारों का आनंद ले रहा हूँ। आकाश में बादल छाए हुए हैं और टिप टिप बूंदी बूंदा हो रहा है, लेकिन बारिश झमाझम नहीं हो रही है, लेकिन मौसम अच्छा बना हुआ है।
1: मौसम अच्छा बना हुआ है
0: जी,
1: जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ऐसा ही यहाँ पर भी है।
0: बरसात तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धुआंधार होनी है।
1: सही कह रहे हैं आप। तो अब अपन गीत कौन सा सुनेंगे?
0: क्या है कि अब भगवान कृष्ण की जो कृष्ण जन्माष्टमी है,
1: जी
0: जन्मोत्सव भगवान कृष्ण का, वो तो अब आने वाला है।
1: बिल्कुल,
0: शुक्रवार को हम मना रहे हैं, 4 अगस्त को, और
1: हाँ,
0: मथुरा वृंदावन में काफी धूम मची हुई है। अच्छी
1: जी
0: खासी तैयारियां चल रही हैं,
1: हाँ,
0: घर घर सजावट हो रही है और दीवालों में मंदिर में तो काफी साज सज्जा का आयोजन किया जा रहा है।
1: जी
0: भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने की तैयारियां खूब जोर शोर से हो रही है और शासन प्रशासन भी चुस्त और दुरुस्त है, क्योंकि जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ पर काफी भीड़ होती है, काफी श्रद्धालु भक्त और पर्यटक आते हैं,
1: जी
0: जिसके कारण से यहाँ काफी गहमा गहमी रहती है।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल सही
0: शासन
1: कह रहे हैं।
0: प्रशासन काफी चुस्त और दुरुस्त है, पूरी तैयारियां की जा रही हैं।
1: जी
0: ऐसे में आपको बुंदेलखंड परिवार को और सभी श्रोताओं को भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। ये भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव सबके लिए कल्याणकारी मंगलमय हो और सबको खुशियां आनंद प्रदान करे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी श्रोताओं को भी।
0: जी, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है कोहिनूर,
1: जी
0: रफी साहब ने गीत को गाया है।
1: जी
0: मधुबन में राधिका नाच रे, मोहन की मुरलिया बाज रे, मधुबन में राधिका नाच रे। ये गीत सुना दीजिए रफी साहब की आवाज में।
1: मधुबन में राधिका नाची रे।
0: जी, मधुबन में राधिका नाचे, रफी साहब की आवाज है,
1: जी
0: फिल्म
1: जी
0: का नाम कोहिनूर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा समय दो।

0: हेलो,
1: हेलो
0: रेडियो साथ जी, रेडियो बुंदेलखंड जी। साथ
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो बुंदेलखंड से। आप कहाँ से?
0: जी, पहले तो जी आपको प्यार ते संस्कार भरी सत श्री अकाल जी। सर जी,
1: बिल्कुल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल।
0: जी गांव मौड़ खुर्द, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, पंजाब से जगजीत मट्टू बोलता हूँ सर जी। ठीक
1: जी जगजीत जी, कैसे हैं आप?
0: ठाक सर जी, तुसी बताओ जी, ठीक ठाक हो जी?
1: जी
0: सर जी, तुम्हारे साथ दूसरी बार बात हो रही है, एक बार
1: बिल्कुल
0: पहले भी हुई है
1: बिल्कुल
0: जी। वो
1: बिल्कुल, सही बात कह रहे हैं। अपनी तो अपनी दूसरी बार बात हो रही
0: सर
1: है।
0: जी, तुम्हारी सेहत, घर परिवार खैर सुख ठीक ठाक है जी? बढ़िया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है, पूरा परिवार ठीक ठाक है। आप सब जन कैसे हैं? ठीक हैं?
0: हाँ जी, सारे ठीक ठाक है जी। पर साहब जी, हमारे पंजाब में बारिश नहीं हुई है इसकी।
1: अच्छा,
0: हाँ जी, क्या अपने जी?
1: अपने यहाँ फुर-फुर पड़ रही, थोड़ी छोटी छोटी बूंदें।
0: अच्छा सर जी,
1: आपके यहाँ
0: चलो
1: पर
0: जी।
1: अच्छी पर अच्छी बरसात हो रही?
0: पानी
1: आपके यहाँ पानी अच्छा बरस रहा?
0: सर जी, मेरे तो बारिश आई नहीं जी,
1: हाँ,
0: सारा सावन सूखा गया जी।
1: ओहो, सारा सावन सूखा गया।
0: और सर जी, आज की बारिश नहीं हुई जी, बहुत मुश्किल आ रही है जी।
1: ऐसा
0: और जी, गर्मी बहुत ज्यादा है सर जी।
1: गर्मी भी पड़ रही?
0: और जी,
1: ओ
0: तो चलो जी, मालिक मुझे अरदास बेनती कर नहीं पाएगा जी के नहीं।
1: जी,
0: आसाद जी, फिर एक मुझे सांगा जी, एक फिल्म है जी,
1: जी
0: शोर फिल्म है जी, शोर। हाँ
1: शोर,
0: जी, इसमें बोल गुनगुना कर बताऊं सर जी? धन्यवाद
1: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है।
0: सर जी, सर जी सुनो जी। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे
1: उसे
0: उससे
1: जैसा। क्या
0: जैसा।
1: बात है।
0: क्या गाओ गाओ सर जी, तुम बहुत सुना गाते हो जी, अच्छा गाते हो
1: हाँ,
0: जी। हो सर
1: पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा।
0: जी, लास्ट बेनती कर रही, मार्ग पर जरूर पाएगा भाई।
1: हाँ
0: ठीक है सर जी, तुमने बहुत टाइम दिया जी, इस करके तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्यार सत्कार भरी पंजाब वालों सत श्री अकाल बुलाता हूँ। ठीक है सर जी,
1: जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
0: सत श्री अकाल सर जी,
1: सत
0: बाबा
1: श्री
0: नाम
1: अकाल
0: पंजाब
1: सत
0: की
1: श्री
0: रहते
1: अकाल।
0: रखी।
1: चलो गी सुनते हैं।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल सर। मैं रेडियो दोस्त परवेज अहमद बनारस से आपसे मुखातिब हो गया हूँ।
1: जी कैसे हैं परवेज जी?
0: बहुत बढ़िया है सर, आपसे बात हो गई तो और अच्छे हो गए। आज पहली बार आपसे बात हो रही है सर।
1: क्या बात है, आपकी पहली बार बात हो रही।
0: जी जी सर, हमारी पहली बार बात हो रही है, और
1: जी
0: जो कि

0: सोचे आज हमारी बात हो जाए, लगातार मिला रहे थे और
1: जी
0: बात हो
1: बिल्कुल
0: रही है
1: बिल्कुल
0: आपसे।
1: बिल्कुल, आप लगातार मिला रहे थे फोन।
0: हाँ लगातार मिला रहे थे, आप कनेक्ट हुए हैं
1: हाँ
0: सर।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन लगावे के लाने। और कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है सर, अगर नाम बता देते तो सर कृपा होती।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या नाम बताया था?
0: मैं अपना नाम बताया हूँ, परवेज अहमद बनारस से सर।
1: अच्छा परवेद जी।
0: जी सर,
1: जी मेरा नाम है माता दीन।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर नाम बताने के लिए।
1: जी
0: और सर प्रोग्राम तो आपका बहुत अच्छा चलता है और हमारे कुछ और दोस्त भी हैं आपके तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं आपके केंद्र पे। जी
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको उनके नाम लेने तो उनके नाम भी ले सकते आप।
0: हमारे दोस्त हैं राजू यादव उर्फ रामपाल यादव जी बुंदेलखंड से, और हमारे अनुप सिंह जी और बलवंत जी हैं, और हमारे तमाम श्रोता हैं आपके तरफ से जो वहां जुड़ते हैं, और हम उन्हीं के द्वारा आपका जो कि नंबर पाए हैं सर।
1: अच्छा
0: जी सर,
1: चलो बढ़िया है बढ़िया है, ये तो होना चाहिए एक दूसरे का सहयोग करना।
0: जी सर, प्रोग्राम तो आपका बहुत अच्छा चलता है सर और
1: जी
0: सुनते रहते हैं, आज मेरी बात भी हो रही है तो और अच्छा लग रहा है
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, आज अपन कौन सा गीत सुनेंगे?
0: सर। आज साधना जी का जो है कि बर्थडे है, तो
1: जी
0: आज उन्हीं का एक गाना सुनना चाहेंगे।
1: जी
0: कि सैया ले गए जिया, जी
1: तेरी पहली नजर
0: सर, सैया
1: है?
0: ले गए जिया तेरी पहली नजर, और ये गाना सर उनके ऊपर फिल्माया गया है।
1: हाँ
0: बहुत ही अच्छा गाना है, और आपके रेडियो से जब चलेगा तो तमाम श्रोताएं सुनेंगे तो उनको भी आनंद आएगा सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जरूर।
0: सर, तो आप इस गाने में डेडिकेट रहेंगे, और हमारे तमाम दोस्त जो हैं आपका रेडियो जो सुन रहे हैं उनको भी ये गाना डेडिकेट रहेगा सर आपके माध्यम से।
1: जी
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी श्रोताओं के लिए
0: सर,
1: बहुत बहुत
0: एक बार
1: धन्यवाद।
0: पुनः फिर नमस्कार आदाब और सत
1: बिल्कुल
0: श्रीकाल।
1: नमस्कार नमस्कार, चलो गीत
0: अच्छी
1: की
0: बात
1: ओर
0: है।
1: चलते हैं अब।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: प्रेमदास बाबा जी हमको जोड़ रहे हो। उन सब फोन नहीं लग रहा हो।
0: जी, किनको नहीं लग रहा हो फोन?
2: जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे
0: हेलो हेलो हेलो हेलो
1: बाबा जी।
3: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: हेलो
3: हेलो।
0: जी भैया, कहाँ से?
3: हाँ नमस्कार साहब, नमस्कार। राधे राधे, गुड नून।
0: राधे राधे, राधे राधे।
3: हम जो है प्रेमदास बाबा जी बोले, ग्राम नेपरा जिला महोबा उत्तर प्रदेश।
0: जी प्रेमदास जी, कैसे हैं आप?
3: बहुत बढ़िया है, मौसम का मजा ले रहे। बारिश हो रही झमाझम।
0: बिल्कुल अच्छा, झमाझम बारिश हो रही।
3: बिल्कुल झमाझम, सावन की ऐसी झड़ी है।

0: बिल्कुल बिल्कुल, चलो ये तो बढ़िया है, मौसम
1: और
0: सुहाना
1: हाँ,
0: है।
1: ये मौसम भीगा भी है, हवा भी कुछ ज्यादा ज्यादा है, आज तुमसे बात करने का इरादा
0: हाँ क्या बात की, एक बार फिर से बोल दूँ शायरी खूँ
1: है।
0: है।
1: आप भी अच्छे हुए हैं, भगवान की कृपा से।
0: बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है, आप ठीक हैं?
1: हाँ हम भी बढ़िया हैं वैसे।

0: योगा करना, नियमित चलना, खान पान में सावधानी बरतना, दिन में खाना खा ले, रात में कभी खाना नहीं खाते हैं।
1: अच्छा,
0: दिन में खाना होना चाहिए 5:30 को, और शाम के जल्दी सो जाना चाहिए 8 बजे, और सुबह 4 बजे जागना चाहिए। उसी टाइम अपनी पूजा पाठ करके इसके बाद फिर रेडियो पकड़ा।
1: जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है जी। तो आज अपन गीत कौन सा सुनेंगे बाबा जी?
0: गीत शायद फिल्म तो हम नहीं जो है हंसते हंसते कट जाए रास्ते जीवन यही चल।
1: हाँ, क्या बात कही, हंसते हंसते कट जाए रास्ते
0: जिंदगी यही चलती रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और ये साहब डेडिकेट कर रहा है आप जो है राजू यादव उपरा का
1: जी,
0: भूषण लाल मनकारी दिनकर जो है चित्रकोट, विजय कुमार पांडे बलरामपुर
1: जी,
0: देवी संजा सुगला जिला फतेहपुर, और शारदा प्रसाद मथुरा।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: आपको भी धन्यवाद। ओके, राधे राधे
1: राधे राधे राधे राधे। चलो ठीक है, गीत सुनते हैं आप अपने।
0: ओके ओके, थैंक यू वेरी सो मच।
1: थैंक यू।

0: हेलो।
1: राम राम भैया। अरे
0: जय सियाराम, जय सियाराम भैया, जय सियाराम। कहाँ से
1: माता दी भैया राय से यार बोल रहे बस उस टाइम लेवेड़ी जिला हुआ है।
0: जी? राजेश जी कैसे हैं?
1: बढ़िया है, दुकान में बैठे थे बस थोड़ी भैया।
0: अच्छा, बारिश हो रही?
1: हाँ
0: चलो बहुत अच्छी बात है। और दुकान भी कैसी चल रही है अपनी?
1: बढ़िया चल रहा है।
0: चलो अच्छी बात है, ऐसी चलती रहनी चाहिए दुकान।
1: और उड़ीसा में कैसी हुई बात?
0: ऐसी टिम टिम टिम टिम बारिश हो रही, छोटी छोटी बूंदें।
1: हाँ वही तो
0: हाँ
1: लगातार हो रही लेकिन काफी दिन से तो
0: अच्छा।
1: टूट
0: हाँ
1: गया
0: चलो ठीक है। तो बताओ राजेश भैया, आज कौन सा होगी सुने बन?
1: जन्माष्टमी है परसों, सबको शुभकामना आपको भी।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपको भी, सभी श्रोताओं
1: और
0: को।
1: जी एक गाना है काला सा काला, काला है कृष्ण कन्हैया।
0: अच्छा चलो अच्छी बात है।
1: मिलो
0: मैं देख रहे
2: भाई, चाय तो नहीं अभी ना, हवा वाली चाय कर।

0: काला से काला, काला है कृष्ण कन्हैया।
1: हाँ जी वही है।
0: कृष्ण कन्हैया को तो नहीं आ रहा।
1: काला मन का काला, काला
0: काला मन का काला।
1: मन का काला।

0: इतना बता दे काना है,
1: है
0: जित नहीं इतना बता दे काना है।
1: ये नहीं है। अब सुना दो कौन हाथ पे उंगली की मदद सुना दो तो यही
0: यशोमती मैया से बोले नंदलाला।
1: सुनवा दो।
0: चलो ठीक है, और का हो रहा अपनो?
1: वो सब बढ़िया है। मूंगफली भी पानी जगाओ
0: मूंगफली आई है फूल पे?
1: और फूल तो निकल लगा
0: फूल
1: अब
0: निकल,
1: दानो पहन लगो मतलब फल लगन लगे बंदा
0: अच्छा दानों पर लगन लगी हुई है, फल क्या बन रही हुई है।
1: कम
0: चलो अच्छी बात है।
1: कम लगेगा ज्यादा पानी है ना।
0: हाँ
1: पानी रुका ही नहीं रहा कोई न
0: अच्छा,
1: अब बताओ एक डेढ़ महीना होगा लगातार बार।
0: जोर से आवाज। चलो ठीक है, चले अब गीत की ओर अपन।
1: और राम राम भैया।
0: राम राम।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार सर
0: नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से?
1: जी। मैं यूपी झांसी ग्राम अठवंदना से प्रीतम सिंह यादव बात कर रहा हूँ
0: जी
1: सर
0: प्रीतम जी, कैसे हैं?
1: जी। सर बढ़िया है, आप कैसे हैं
0: बिल्कुल बढ़िया है प्रीतम भैया।
1: जी? आवाज तो थोड़ी बहुत बारिश हो गई सर।
0: जी
1: हाँ,
0: हाँ
1: और सर
0: जी, बताइए।
1: आपको सर कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी।
1: जी सर। कृष्ण जी का जन्म उत्सव है तो सर कृष्ण जी के ऊपर एक गाना है, कृष्णा कृष्णा हाय कृष्णा
0: अच्छा।
1: जगमग हारे अंगना, ये वाला गीत सुनना चाहेंगे
0: अच्छा,
1: जी सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा।
1: जी सर
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, अपन गीत सुनते हैं।
1: जी, धन्यवाद सर,
0: धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप फतेह बिना अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में, और आप सुन रहे थे जो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम को अब तीन समापन होवे को समय हो गया है। सो अपने दोस्त माता दीन भैया को दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति, और चलत आप सुनो बढ़िया बढ़िया से गीतन खुल्लो गीतन को आनंद। नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओ, इस मल्हार में जब कंस अपनी बहन देवकी और वसुदेव को जेल के अंदर डाल देता है हथकड़ी और बेड़ी लगाकर, तो आठवें बच्चे के रूप में कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं। तो कवि ने क्या लिखा है, आइए सुनाते हैं।

0: करता है।
1: आजीविका जाने सुने और अपनाए।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो साथी मनीष कार्यक्रम आजीविका में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, आप जानते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए उनकी आय को बढ़ाने के लिए कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं इस बारे में हम कार्यक्रम बनाते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से उनको बताते हैं। कहा जाता है दोस्तों, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है और पद चिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है। हाँ दोस्तों, ये कहावत जो कही जाती है, सुनी जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है और उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। छोटी छोटी कहावतों से कहा जाता है कि हम जब किसी के पद चिन्हों पर चलते हैं, किसी के मार्गदर्शन से हम चलते हैं, किसी के मार्गदर्शन द्वारा हम चलते हैं, तो हम आगे चलकर एक सफल उद्यमी माने जाते हैं। जो कि हमने कार्यक्रमों में पहले भी बताया था कि उद्यमिता क्या है, उद्यमिता होने के क्या महत्व है। आज के साथी हमारे कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सफल उद्यमी के क्या क्या गुण होने चाहिए, कैसे उनको व्यवसाय लगाने चाहिए जिससे उनकी आजीविका में वृद्धि हो सकी। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में साथियों आपको ले चलते हैं हितेश धाकड़ जी के पास, जो उप निदेशक हैं हमारे औद्योग विभाग से, और साथ में कुछ हमारे विषय विशेषज्ञ हैं जो उद्योग को लेकर काफी अच्छी उनको पकड़ है। उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए और कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए जिससे हमारे युवा साथी अपने कार्य में सफल बने, आगे चलकर सफल उद्यमी कहलाए। तो आइए हम आपको हितेश धाकड़ जी के पास ले चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि हमारे युवा साथी किस तरीके से सफल उद्यमी बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। आइए इनसे बातचीत करते हैं।

0: सफल उद्यमी जैसे हमारा साथी बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या गुण उसके अंदर होने चाहिए?
1: एक सफल उद्यमी की पहली विशेषता होती है अनुभव।
0: जी
1: अनुभव और उसका ज्ञान होना। आप जिस भी उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं या जिस भी व्यवसाय की आप स्थापना करना चाहते हैं, उसको आपको बारीकी से ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आप अगर हमारे युवा किसी उद्यम की स्थापना और अग्रेसित होना चाह रहे हैं या आकर्षित हैं, तो उन्हें पहले ये निश्चित करके कि आप करना क्या चाहते हैं और आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र विशेष में जहां आप उद्यम की स्थापना करना चाहते हैं, वहां क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है।
0: जी,
1: क्योंकि देखिए मार्केटिंग भी बहुत बड़ा इशू आता है।
0: बिल्कुल,
1: केवल उद्यम लगाना ही पर्याप्त नहीं होता, मार्केटिंग स्किल भी होनी चाहिए।
0: जी,
1: तो सबसे महत्वपूर्ण गुण यही है कि पहले तो मार्केट स्टडी करें,
0: जी,
1: किस चीज की आवश्यकता यहाँ पे है,
0: जी,
1: किस चीज की उपलब्धता यहाँ पर है,
0: जी,
1: और जो हम उद्यम चलाने वाले हैं उसकी मार्केटिंग हम किस तरीके से लोकल में या बाहर के क्षेत्रों में कर पाएंगे।
0: जी,
1: तो उससे उसको उद्यम लगाने से पहले हमारे युवाओं को थोड़ा सा बेसिक जानकारी उस चीज की होनी चाहिए।
0: जी जी जी।
1: अब बात आती है फाइनेंस की, क्योंकि वित्त पोषण भी एक समस्या रहती है उद्यमों के विकास के लिए।
0: जी,
1: तो काफी विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, शासकीय योजनाएं, मध्य प्रदेश शासन की भी योजनाएं हैं, केंद्र शासन की भी योजना, उनके अंतर्गत हम वित्त पोषण की सुविधा प्रदान कराएंगे।
0: जी जी सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि व्यवसाय तो ठीक है लोग लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति को अगर देखा जाए, बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति को जाना जाए, तो क्या यहाँ पर कौन कौन से ऐसे व्यवसाय संभव है जो कि आसानी से लोग कर सकते?
1: देखिए, अगर ओरछा या फिर निवाड़ी जिले या इस बुंदेलखंड की बात की जाए, तो यहाँ पे कई सारी संभावनाएं
0: हैं।
1: रिसोर्सेस हमारे पास प्रकृति की कृपा से हमारे पास काफी सारे रिसोर्सेज है।
0: जी,
1: तो एक तो मिनरल्स के क्षेत्र में काफी कुछ किया जा सकता है।
0: जी,
1: हालांकि निवाड़ी के ओरछा तहसील में काफी सारी इकाइयां खनिज की लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त आता है आपका जो बढ़ती हुई जो आवश्यकताएं हैं, आप जो वुवन बैग्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि कल 2 अक्टूबर के बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक का हमें खात्मा करना है।
0: जी जी,
1: ये सतर्क रहना है। तो फलस्वरूप एक उसके वैकल्पिक उपयोग की आवश्यकता बढ़ेगी।
0: जी जी,
1: पॉलिथिन का वैकल्पिक क्या हो सकता है? तो हम जूट के थैले, वुवन बैग, जो क्या डिग्रेडेबल रहते हैं, जो प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाते, उसकी इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं।
0: जी,
1: इसके अतिरिक्त छोटे उद्यमों की भी स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि सोना पत्तल हुआ।
0: जी,
1: क्लायक ब्रिक्स हुआ।
0: जी जी जी,
1: सीमेंट उद्योग हुआ।
0: जी,
1: क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर और जो बाकी प्राकृतिक पत्ते, इनकी भरपूर उपलब्धता है, तो सीमेंट और पेवर्स क्लॉथ वगैरह काफी संभावना इस क्षेत्र में है।
0: जी जी जी, और यहाँ पर सर उद्योग स्थापित कर तो लेते हैं, लेकिन वही समस्या यहाँ पर आती है लोगों को कि उनको ट्रेनिंग्स की आवश्यकता रहती है, तो क्या सरकार की ओर से ऐसी कोई ट्रेनिंग्स लोगों को दिलाई जाने की बात की जा रही है, या फिर ट्रेनिंग्स दिलाते भी हैं यहाँ पर?
1: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं अपने युवाओं को बताना चाहूंगा कि हर जिले में एक RCT की स्थापना की गई है।
0: जी,
1: रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
0: जी,
1: यह उस जिले की अग्रणी बैंक द्वारा संचालित किया जाता है, हमारे टीकमगढ़ जिले में SBI द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को ट्रेनिंग देना, उद्यमिता से जुड़ी हुई ट्रेनिंग देना।
0: जी,
1: हमारे इच्छुक युवा, हमारे इच्छुक भाई बहन जो भी उद्यमिता संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक आवेदन RCT टीकमगढ़ में कर सकते हैं, तथा उनको अगले बैच में जब उनका जो ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी, तो उन्हें सूचना देके उनको बुला लिया जाएगा। तो ये हर ट्रेड वाइज, हर उद्यम वाइज ट्रेनिंग रहती है, जिसके दिन अलग अलग रहते हैं। तो जो भी युवा इच्छुक है, उनको हम ट्रेनिंग शासन की तरफ से मुहैया कराते हैं।
0: सर, कितने दिन की इसमें ट्रेनिंग मुहैया कराते हैं?
1: ये ट्रेड के ऊपर निर्भर करता
0: अच्छा,
1: है
0: ट्रेड के
1: जैसे कि किसी को 15 दिन की ट्रेड रहती है, तो उसका 15 दिन का रहता है।
0: जी,
1: 20 दिन का रहता है, किसी एक महीने का रहता है, किसी का 5 दिन का भी रहता है। वो ट्रेड के ऊपर निर्भर रहता है।
0: जी,
1: कि आपको कितने दिन की ट्रेनिंग दी
0: सर? प्रशिक्षण के बाद यदि उसको प्रमाण पत्र मिलता है, तो क्या बैंकों में उसकी, जैसे हम सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ उस प्रशिक्षण वाले प्रमाण पत्र को, तो उसमें कुछ सहूलियत होती है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसमें देखो प्लस पॉइंट हमेशा आवेदक को मिलता है। वो ये वो जब वो सर्टिफिकेट प्राप्त करता है, तो वो

0: यह दर्शाता है कि उसके पास एक अन्य लोगों से विशिष्ट उपलब्धि है, उसको उस क्षेत्र का ज्ञान है, उस क्षेत्र का जो भी अनुभव है वो ट्रेनिंग में उसने लिया लिया गया है। तो
1: जी
0: मेरे अनुसार बैंक उसको अधिक कंसीडर करती है, उस पर अधिक विचार करती है और उसको जरूरी लाभ मिलता है।
1: जी अभी वर्तमान में सर उद्योग विभाग की ओर से कौन कौन योजनाएं संचालित की जा रही हैं?
0: जी, वर्तमान समय में उद्योग विभाग में 4 योजनाएं संचालित की जा रही हैं रोजगार
1: जी
0: मूलक, जिसमें 3 मध्य प्रदेश शासन की योजना है और 1 केंद्र शासन की योजना है। सबसे
1: जी
0: पहले मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी है।
1: जी
0: हमारे यहाँ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री
1: जी
0: युवा उद्यमी योजना
1: जी
0: और किसान पुत्र पुत्रियों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना संचालित है।
1: जी
0: मुख्यमंत्री स्वरोजगार की बात की जाए तो इसमें 50,000 से लेके 10 लाख तक का ऋण सेवा
1: जी
0: उद्योग तथा व्यवसाय तीनों श्रेणी के लिए लिया जा सकता है।
1: जी जी जी
0: जबकि युवा उद्यमी की बात की जाए तो ये 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की योजना है। इसमें केवल सेवा और उद्योग की इकाइयों के लिए ही ऋण लिया जा सकता है,
1: जी
0: इसमें
1: जी जी
0: व्यवसाय शामिल नहीं है।
1: जी
0: और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 50,000 से लेकर 2 करोड़ तक है। इसमें सेवा, व्यवसाय तथा उद्योग तीनों प्रकार की इकाइयां स्थापित की जा सकती
1: अच्छा। केंद्र सरकार की सर कौन सी
0: है। हाँ,
1: योजना
0: एक केंद्र सरकार की योजना भी हमारे यहाँ संचालित है, वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
1: है? सृजन कार्यक्रम
0: ये योजना 50,000 से लेकर 25 लाख तक है
1: अच्छा।
0: जी। और इसमें सेवा तथा उद्योग की इकाइयों को ही कहीं स्थापना की जा सकती है, इसमें व्यवसाय आपात श्रेणी में है।
1: चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे युवा साथियों को एक मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि उद्यमता के क्षेत्र में लोग अपने एक तरीके से विचार कर रहे हैं कि अब क्योंकि नौकरियां बहुत ही कम देखने को मिल रही हैं और बहुत ही कम रोजगार हो गए हैं, तो लोग अब उद्यमता की ओर रुख कर रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण जानकारी देकर हमारे युवा साथियों को मार्गदर्शन दिया, इसलिए धन्यवाद सर आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

अपना रेडियो अपनी बात है, एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, हमारे हितेश धाकड़ जी ने कितनी अच्छी जानकारी हमारे युवा साथियों को दी कि किस तरीके से हमारे युवा साथी एक सफल उद्यमी बनने के लिए उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या उनको कार्य करने चाहिए जिससे वो सफल हों, अपने जीवन में सफल हों, अपने व्यवसाय में सफल हों। साथियों, आप जानते हैं कि क्या बातें हैं सबसे जरूरी कार्य में आनंद करने के लिए। ये एक गुण होता है जो आपको एक सफल उद्यमी बना सकता है। दूसरा कि गंभीरता, आप तब तक अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपका उसमें अटूट विश्वास ना हो। ये एक दूसरा गुण होता है जो आपको सफल उद्यमी बनाने में मदद करता है। तीसरा साथियों, आत्मविश्वास की कमी, जो कि हितेश जी ने बताया था कि आत्मविश्वास आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास किसी भी नए उद्यमी के लिए आत्मविश्वास सबसे जरूरी होता है। चौथा साथियों, योजना आपको बनानी चाहिए कि हमें कौन सा व्यवसाय लगाना है, कैसे लगाना है। पूर्ण योजना के साथ यदि हम व्यवसाय करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। अगली जो साथियों आपको सफल उद्यमी बनाने का गुण हम आपको बताते हैं, अगली जो गुण होना चाहिए हमारे युवा साथियों को जो सफल उद्यमी बनने के लिए, वो होना चाहिए खतरे उठाने वाला होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जोखिम आएंगे आपको, यदि आप उद्यम डालते हैं तो आपको सबसे पहले मार्केट बनाना होता है, और इसके बाद मार्केट के साथ साथ बहुत सारी समस्या जो रहती है वो सामने आती है। तो ऐसे में खतरे उठाने वाला होना चाहिए, सब तभी एक सफल उद्यमी वो बन सकता है। विशेषज्ञता रखने वाला होना चाहिए, यानी हर विषय में उसको जानकारी होना चाहिए। संबंध जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसकी विशेषज्ञता आपके पास होना चाहिए। खुद में निवेश करने वाला होना चाहिए। यदि ये सारे गुण आपके अंदर हो तो आप एक सफल उद्यमी बन सकते हैं और आप आगे जा सकते हैं। साथियों, कार्यक्रम में हम एक विराम लेते हैं, यानी लोकगीत के साथ मनोरंजन करते हैं। इसके बाद साथियों आपकी हमारी बातचीत होगी और आपको हम विमल जी के पास ले चलते हैं, और विमल जी चूंकि विषय विशेषज्ञ हैं उद्यमता को लेकर, तो उनसे जानते हैं कि आखिरकार हमारे युवा साथी यदि कोई व्यवसाय डालना चाहते हैं तो सफल बनने के लिए कौन कौन से गुण उसमें होने चाहिए, कैसे सफल हमारा व्यवसाय बन सकता है हमारा युवा साथी। तो आइए इस प्यारे से लोकगीत को हम सुन लेते हैं।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने हरप्रसाद कुशवाहा और उनकी साथियों में इस प्यारे से लोकगीत को सुना। आइए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे विषय विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सफल उद्यमी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आइए उनकी बातचीत को हम सुनते हैं विमल जी के साथ।
1: ऐसे में हम क्या करें कि अपनी आय को बढ़ाएं या एक रेगुलर आय हमारे पास में एक आती रहे, जिससे कि हम कर सकते, तो उसका ये कि है कि हमें कृषि के अलावा भी अन्य वैकल्पिक साधनों को खोजने की जरूरत है
2: जी।
1: तो हम अपने क्षेत्र में क्या चीज ऐसी करें, कुछ ऐसा कुछ छोटा सा उद्योग लगाएं जिसमें बहुत कम पूंजी में कुछ उद्योग लगा करके कुछ ऐसा काम करके हम जो है वो अपनी आय की वृद्धि कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे क्षेत्र में किन चीजों की खपत है, उन खपत के अनुरूप ही हमको उद्यम लगाने की जो है वो आवश्यकता है
2: जी।
1: अगर हमारे यहाँ पर तेल तिलहन अधिक हो रहा है तो हम तेल का कुछ लगा लें, अगर हमारे यहाँ मसाले अधिक है तो मसाले की चीज लगा लें। तो कैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कोई आंवला जैसे हमारे यहाँ हो रहा है तो हम आंवले के अचार का लिए हम एक छोटा सा उद्यम लगा सकते हैं। कई प्रकार के उत्पाद जो है उसके भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, हमको बहुत छोटी सी कोई हम महीने भर की ट्रेनिंग या दो तीन महीने की ट्रेनिंग लेकर के और किस प्रकार से उस प्रोडक्ट को लंबे समय तक हम बना सकते हैं और छोटा छोटा उद्योग लगाएं, तो ये भी अगर हम प्रयास करें तो हम अपने आय के साधन में जो है वो वृद्धि कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी।
1: धन्यवाद।
0: अपना रेडियो अपनी बातें, आप हैं इस वक्त आपके अपने रेडियो साथी मनीष के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम आजीविका को। और साथियों, अभी आपने विमल जी से इतनी अच्छी जानकारी को जाना समझा और हमें तो लगता है कि अब हमें स्वयं का व्यवसाय करने में कुछ देर नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पास ये सारे गुण है अच्छे उद्यमी बनने के लिए तो आप तुरंत उद्यम स्थापित आपको करना चाहिए और उद्यमिता में आप एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आम तौर पर किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय में सफल होने के लिए उसके एक से अधिक पक्षों पर ध्यान देना होता है, परंतु एक उद्यमी की सफलता में सीधे तौर पर व्यवसाय से जुड़े पक्षों के अलावा कई ऐसे पक्ष भी जुड़े जाते हैं जिन्हें उसे काम शुरू करने से पहले और काम करते समय लगातार अभ्यास में लाना पड़ता है। क्या होती है एक सफल उद्यमी की विशेषता, आइए आपको

हम थोड़ा और बता देते हैं, क्योंकि हमारे विषय विशेषज्ञ और साथ में उद्योग विभाग के उप निरीक्षक ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए आपके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए। हमने भी आपको बीच बीच में बताया कि हमारे युवा साथी किस तरीके से एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। वह ग्राहकों को तैयार करता है और ग्राहक रोजगार और आर्थिक विकास को आगे ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक उद्यमी की राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका होती है। दरअसल विकास के एक पल्ले पर अगर रचनात्मकता और विचार, खोज और नवीनीकरण देखते हैं तो दूसरे पल्ले पर आर्थिक और व्यापारिक पक्ष नजर आता है। इन दोनों पर्णों को यदि हम अपनी अनोखी सोच से साधने वाले व्यक्ति ही एक सफल उद्यमी कहलाते हैं। कहा जाता है कि क्या सचमुच एक सफल उद्यमी पैदा नहीं होते हैं? इस सवाल के जवाब में यह कहा जाता है कि एक सफल उद्यमी में कुछ प्रतिशत जन्मजात प्रतिभा होती है और बाकी वह सीख सकता है। यह भी कहा जाता है कि उद्यमी एक घोड़े की तरह होता है जो नवीन विचारों की गाड़ी को खींचता है, और उसका मतलब एक सफल उद्यमी होने के लिए व्यक्ति में एक साथ कई गुण बहुत जरूरी रहते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे प्राकृतिक तौर पर मिलते हैं और अन्य वह काम और अनुभव के साथ साथ चमका सकता है। व्यवसाय विशेषज्ञों का यही कहना है कि सफल उद्यमी किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं और वह समाज के किसी भी घड़े में आ सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि उच्च शिक्षा उसको अंदर होनी चाहिए, और उनके व्यक्तित्व के अलग अलग तरह के वो हो सकते हैं। इसलिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कई स्थानों पर उद्यमी के लिए उच्च शिक्षा ज्यादा काम आती है, लेकिन अपने काम को बुनियादी जानकारी जरूर काम आती है। जरूरी नहीं है कि आप प्रथम श्रेणी के उद्यमी ही साबित हों। प्रथम श्रेणी से मतलब ऊंचा लक्ष्य रखने वाला और हर समय काम करता हुआ दिखने वाला श्रेणी के छात्री सफल उद्यमी साबित होते हैं, ये कहा जाता है। तो साथियों, आप भी एक सफल उद्यमी बनिएगा और अपने व्यवसाय को आगे ले जाइएगा। कुछ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिएगा और आप अपने व्यवसाय की ओर मुड़िएगा। इसी के साथ साथियों, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। तो हमें आशा है कि कार्यक्रम सुनकर आपके मन में कई सारे सवाल और कई सारे विचार आ रहे होंगे, तो आप जरूर पूछिएगा। नंबर आप नोट कर लीजिएगा, नंबर है हमारा 9219207749। व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें क्या जुड़ना चाहिए ये भी आप जोड़ सकते हैं हमारे इस नंबर पर। यदि हमारे श्रोता साथी चिट्ठी के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, पता नोट कर लीजिएगा। पता है हमारा, रेडियो बुंदेलखंड है 90.4 ताराग्राम और छतीकला के पास ओरछा। तो साथियों, अगले कार्यक्रम में किसी नए व्यवसाय, किसी नए सोच के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपने रेडियो साथी मनीष को दीजिए जाने की इजाजत, और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत आजीविका से जुड़ा। नमस्कार।

0: नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपके आरजे रेडियो दोस्त वर्षा,
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम
0: हम होंगे कामयाब,
1: और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम इसमें लेकर आते हैं, और खासतौर पर उन छोटी छोटी बातों पर हम बात करते हैं जो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी रहती है। चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें, चाहे वो उनके आजीविका को लेकर बात करें, चाहे वो उनके वैकेंसियों को लेकर बात करें, यानी रोजगार सूचनाओं को लेकर बात करें, तो हम तरह तरह के कार्यक्रम इस हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं।
0: और चाहे हम छोटा काम बड़ा मुनाफा की बात करें, ये तो आप भूल ही गए थे मेरी जी।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और हम अपने युवा साथियों के लिए ये सारे कार्यक्रम हम लेकर आते हैं। आज चूंकि हम मुझे यह कार्यक्रम आज सुनेंगे और इसमें जानेंगे, चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि किसान साथियों की अगर बात करें, खेती किसानी का हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और ऐसे में हमारे किसान साथियों की किस तरीके से आय दुगनी हो, तो कैसे दुगनी हो सकती है जब तक हम किसी योजना का लाभ ना लें, या फिर हम लगे कुछ खेती किसानी में अलग करें, यानी आधुनिक पद्धति से किस तरीके से खेती करें। तो आधुनिक खेती अगर हमारे किसान साथी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती हैं शासन की ओर से, जिनका हम लाभ लेकर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और क्योंकि जब कोई योजना चलाई जाती है तो वो हमारे किसान साथियों के लिए ही होती है, अगर कृषि से संबंधित है तो। लेकिन बस जरूरत ये होती है कि उस योजना के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे हमारे किसान साथी उस योजना का लाभ ले सकते हैं, और कौन से वो किसान साथी हैं जो इस योजना के पात्र हैं।
1: और आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि सिंचाई का अब समय होगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं या फिर अपनी खेती जो जायज की खेती रहती है वो भी अपनी लगाकर उन्होंने खेतों में लगा दी है, तो सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में समस्या आती है कि पानी कहाँ से आए, कैसे पानी दे, वो तो पानी पर ही सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि योजना का हमारे किसान साथी लाभ लेकर और अपनी खेती को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं।
0: बिल्कुल साथियों, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की हुई थी, और जिनके द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेती की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की गई थी,
1: और यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जाएगी जिसमें पानी की बचत भी हो, कम मेहनत हो, और साथ में खर्चे की भी सही तरह से बचत कर सके, ऐसे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने की सुविधा हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि योजना किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं, कितना पैसा रहता है इसमें, तो आपको इसके भी बारे में हम जानकारी दे देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अनाज के लिए कृषि सबसे ज्यादा जरूरी रहती है, और कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई के अच्छे साधन और संसाधन आपके पास उपलब्ध हो।
0: बिल्कुल साथियों, जैसे कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, अगर फसलों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो वह किसानों के खेत खराब हो जाएंगे, और जिससे उनकी फसल अच्छी नहीं होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत किसानों की इस समस्या को दूर किया जाएगा, और किसानों को उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कॉपरेटेड जो कंपनियां रहती हैं उनके माध्यम से उत्पादक किसानों के समूह के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है,
1: और यह राशि वर्ष 2026 तक इसका विस्तार इसका किया जाएगा, और साथ साथ में 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्ष के विस्तार के लिए 2026 तक संचालित करने का इसमें निर्णय लिया गया था। और साथ साथ में आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को प्रदान की जाएगी और साथ साथ में 50% सब्सिडी की राशि जो सीमांत किसान रहते हैं उनको प्रदान की जाएगी। और इस बात की जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जो रहते हैं कृषि विभाग के, उन्होंने ये साझा की है। इसके अलावा फाउंटेन प्लांट की खरीद पर 60% की सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी, साथ साथ में 50% की सब्सिडी अन्य किसानों को प्रदान की जाएगी। और इस योजना को लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो भी आपको साझा कर देना चाहते हैं कि इसमें जो जमाबंदी रहती है, ट्रेस माप रहती है यानी जो आपकी खसरा खतौनी की नकल रहती है, साथ साथ में प्लांट कोटेशन जो रहता है, आप किस चीज का प्लांट डालना चाहते हैं उसका कोटेशन भी आपको लगेगा, सॉयल वाटर टेस्ट रिपोर्ट जो रहती है वो कृषि विभाग द्वारा दी जाती है, साथ साथ में बिजली का बिल, आधार कार्ड आदि होना आपके पास अनिवार्य है। और इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा और यह 15 सितंबर 2021 से ये लागू किया गया था। और हर खेत को पानी योजना के लिए आर्थिक सहायता भी इसमें शामिल की गई है।
0: जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई

0: योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना है, जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी। इस योजना को देश के विभिन्न जिलों में होने वाली पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया गया है, जिससे कि फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के अंतर्गत हर खेत को पानी योजना आरंभ की गई है। हर खेत को पानी योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी खेतों को पानी मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता का उपयोग करके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अब इस योजना के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
1: अब बात आती है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जो 1706 करोड़ रुपया अप्रूव किए गए हैं, उसके भी बारे में हम जिक्र करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 का उद्देश्य क्या है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इस पर भी, चूंकि खेती किसानी जुड़ी योजना है, इस पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषता, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक अच्छे से गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष
0: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में। सुनते रहिए कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, मुझे हक है।

0: रेडियो अपनी बातें, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में मुझे हक है, जिसमें हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के बारे में।
1: और साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1706 करोड़ जो रूपए अप्रूव किए गए हैं, उसकी सहायता के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग 22 दिसंबर 2020 को संचालित की गई थी। और इस मीटिंग में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1706 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए थे। मध्य प्रदेश का इसमें 682 करोड़ रुपए और 40,40,000 रुपए का शेयर भी है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली जिले शामिल भी हैं। अब हमारे श्रोता साथी सोच रहे होंगे, हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कृषि योजना का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वो खराब हो जाएगी। और हमारे देश के किसान किस पर निर्भर रहते हैं? वो भी पानी पर निर्भर रहते हैं, सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। तो ये कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज्यादा बल जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग है, ताकि बाढ़ और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम ये कर सके। साथ साथ में उपलब्ध संसाधनों को कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ में किसानों की हमारी पैदावार भी बढ़ सकेगी। प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इसमें मुद्रा प्रति बूंद योजना 5 वर्षों के में देश के खेती वाले क्षेत्र के विस्तार करेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश में हर जगह पानी मुहैया कराएगी और देश के फसल राशन को बढ़ावा देगी। यह देश के किसानों के जीवन स्तर में सुधार करेगी और इस प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रति फसल योजना के तहत अधिक फसल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन भी करेगी। अब विशेषताएं क्या क्या है वो भी आप जान लीजिएगा।
0: श्रोताओं, सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस योजना के अंतर्गत पानी के सोर्स जैसे कि जल संचयन, भूजल विकास आदि का निर्माण करवाएगी। इसी के साथ यदि किसान द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदे जाते हैं तो उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि का भी बड़ा महत्व है इसमें और उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यदि फसलों की सही प्रकार की सिंचाई प्राप्त होगी तो पैदावार भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना का लाभ वह सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन और उस जमीन पर वो खेती करते हो, जल का स्रोत हो। इसके अलावा वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या सरकारी सदस्य हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदने पर इस योजना के अंतर्गत 80% से 90% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
1: अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि इसमें और क्या जानकारी हम उपलब्ध करा सकते हैं, तो बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो कंपोनेंट है वो है कन्वर्जेशन विद नरेगा, यानी कन्वर्जेशन जो रहता है नरेगा का, उसके माध्यम से आपको पैसा मिल सकता है। वाटरसेट परियोजना के माध्यम से मिल सकता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अदर इन्वेस्टमेंट पर भी पैसा हम निकाल सकते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन, हर खेत के पानी खेत में, इस पर भी हमारे इस योजना को रखा गया है। पात्रता क्या होनी चाहिए इस योजना

0: का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होंगे, ट्रस्ट भी होगा, सहकारी समितियां होंगी और जो कोऑपरेटिव कंपनियां जो रहती हैं उनके उत्पादक कृषकों के समूह यानी एफपीओ के सदस्य भी इसमें रहेंगे और अन्य पात्र जो पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्य भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब दस्तावेज क्या क्या लगना चाहिए इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के दस्तावेज जो है वो इस प्रकार से हैं। आपको जरूरत पड़ेगी आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागजात, जमीन की जमाबंदी, खेत के नकल, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
0: और हमारे साथी सोच रहे होंगे कैसे आवेदन करें, तो योजना की जो जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए अधिकारित पोर्टल स्थापित किया गया है। यहाँ पर योजना से संबंधित हर जानकारी विस्तार पूर्वक तरीके से बताई गई है। पंजीकृत या आवेदन के लिए राज्य सरकार अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ले सकती है। अगर आप योजना के आवेदन के लिए इच्छुक हैं तो अपने प्रदेश के कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन संबंधित जानकारी ले सकते हैं और प्रतिक्रिया जो इसमें रिपोर्ट देखने की प्रतिक्रिया जो रहती है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा।
1: बिल्कुल साथियों, MIS रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके पश्चात आपको MIS रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुलकर आएंगे, जैसे अचीवमेंट रिपोर्ट, कंसोलिडेट एक्टिविटी बाइफ OTF, वन टच फॉर्मेट, DIP डॉक्यूमेंट अपलोडेड, पर ड्रॉप, मोर क्रॉप, डैशबोर्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PDMC, MI, वर्कफ्लो सिस्टम, ड्रिप डाउन प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको व्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा। संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी।
0: तो ये सारे दस्तावेज हमने बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगर आपको नहीं लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी जो रहते हैं उनके पास जाकर पूछना होगा और ऑनलाइन इसके आवेदन जमा करने होंगे। तो ये जानकारी आपने जो हमने कार्यक्रम के माध्यम से बताई है तो हमारे किसान साथी इसका लाभ ले सकते हैं। और साथियों, अब हमारा वक्त भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो इस पर यदि आपको कोई विचार देना है या टिप्पणी करना है या फिर आपको फीडबैक देना है तो दे सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
1: हमारा नंबर है 9425141726।
0: तो आपके रेडियो साथी मनीष
1: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। हमारी और आपकी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

एपिसोड 10 दृश्य स्वच्छता स्वच्छ आंखें स्वच्छ जीवन। इस एपिसोड का उद्देश्य गांव में सफाई के महत्व को समझना है, जो हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। इस कार्यक्रम के मुख्य संदेश है गांव में साफ सफाई, पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त गांव। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति BWSC की भूमिका, सामुदायिक निगरानी और देखरेख, कचरा और प्लास्टिक का सही प्रबंधन, सरकारी समर्थन और सामुदायिक भागीदारी। पहले और बाद में पूछे गए सवाल। सवाल नंबर 1, क्या साफ सफाई सिर्फ घर की होनी चाहिए या बाहर भी जरूरी है, हाँ या नहीं? सवाल नंबर 2, क्या हमें खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर 3, क्या स्कूल, तालाब और बस स्टॉप जैसी जगहों पर भी साफ सुथरी होनी चाहिए, हाँ या नहीं?

0: नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी कार्यक्रम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा और मेरे साथ है जोश से भरपूर मेरे सहहोस्ट आरजे
1: माता दिन।
0: दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा सा खास है। हम सिर्फ उस सफाई की बात नहीं कर रहे जो हमारी आंखें देखती हैं, बल्कि उस हवा की भी जिसे हम रोज सांस लेते हैं और उस माहौल की जो हमारी जिंदगी का सीधा प्रभावित करता है। और हाँ, आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाली हूँ।
1: बढ़िया, चलो सुनाओ।
0: मेरे दोस्त की मेघालय यात्रा कमाल की रही। वो एक छोटे गांव की इतनी तारीफ कर रहा था कि मैं हैरान रह गई। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, मैं तो बस देखते ही रह गई। फिर मैंने खुद इंटरनेट पर खोजबीन की और सच में वो बढ़ चढ़कर नहीं बोल रहा था।
1: तुम तो सस्पेंस बढ़ा रही हो, अब ज्यादा घुमा फिरा कर मत बोलो। जल्दी बताओ कि आखिर ये कौन सा गांव है और यहाँ क्या खास है।
0: अच्छा सुनो, इस गांव का नाम मावलिन नोंग्स है। ये मेघालय में है और इसे एशिया का सबसे साफ गांव कहा जाता है। यहाँ सफाई कोई मजबूरी नहीं बल्कि लोगों की आदत में शामिल है। ये गांव पूरी तरह प्लास्टिक फ्री है, मतलब यहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है और अगर कहीं से प्लास्टिक आ भी जाए तो उसे फेंका नहीं जाता। लोग प्लास्टिक की पुरानी बोतल या टायर से गमला बनाकर दोबारा इस्तेमाल करते हैं। गांव की गलियों में आपको बांस से बने डस्टबिन दिखेंगे। यहाँ स्थानीय चीजों का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। इस गांव की सबसे मजेदार बात है कि यहाँ सभी आदमी और बच्चे रोज अपने आसपास की सफाई करते हैं। टीसल की झाड़ू से बच्चे सड़कें साफ करते हैं। ये झाड़ू पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ है। इस प्रकार सफाई का काम सब मिलकर करते हैं। गांव के घर और बाकी इमारतें भी खास हैं। ज्यादातर बांस और पत्थर से बने हैं। इससे गांव खूबसूरत लगते हैं और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। और हाँ, यहाँ सभी घरों में शौचालय है, यानी कोई भी खुले में शौच नहीं जाता। मावलिन नोंग्स ने साबित कर दिया है कि जब लोग साथ मिलकर जिम्मेदारी निभाते हैं तो दूर दराज के गांव भी पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन जाता है।
1: लगता है तुम इस गांव की बात करना छोड़ नहीं पा रहे हो और मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं दे सकता। गांव की दिलचस्प बातें सुनकर मुझे भी वहां जाने का मन कर रहा है। जो कुछ भी तुमने बताया वो असल में उसी साफ सफाई की बात है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और यही तो आज के लिए एपिसोड का मुद्दा भी है।
0: दोस्तों, दिखने वाली सफाई का मतलब केवल अपने घरों को साफ रखना नहीं है बल्कि पूरे गांव को साफ रखना है। जैसे बाजार, बस स्टॉप, गलियां, स्कूल, हेल्थ सेंटर, तालाब, कुआं, ये सब कूड़े कचरे और गंदे पानी से दूर रहें और अच्छी हालत में रखे जाएं।
1: बिल्कुल, गंदगी भरा माहौल सिर्फ देखने में खराब नहीं लगता बल्कि ये मक्खियों और मच्छरों को बुलाकर बीमारियां फैलाता है। गंदगी हमारे पानी को गंदा करता है, वह हवा को खराब करता है, मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है और खाने की सफाई को भी प्रभावित करता है।
0: सोचिए, क्या आपको ऐसे पेड़ के नीचे बैठकर अच्छा लगेगा जिसके चारों ओर प्लास्टिक और कचरा फैला हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो जगह साफ सुथरी और हरी भरी हो तो वहां बैठना सुकून भरा लगेगा। साफ माहौल सिर्फ अच्छा दिखता ही नहीं बल्कि ये हमारे सेहत, पर्यावरण और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी बेहतर होता है।
1: सोचिए, अगर गांव के मंदिर, मस्जिद, चर्च या पंचायत घर के आसपास कचरे का ढेर लगा हो तो क्या वहां जाना अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण के तहत सरकार गाँव को ODI प्लस लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसका मतलब है सिर्फ खुले में शौच रोकना नहीं, बल्कि कचरे का सही प्रबंधन, गंदे पानी को साफ करना और पूरे गांव को स्वच्छ बनाए रखना भी है।
0: और हाँ, ODF प्लस का दर्जा हासिल करने के लिए गांव को सभी घरों में शौचालय का सही उपयोग सुनिश्चित करना होगा। साथ ही कम से कम 80% घरों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ना सिर्फ उनके आसपास का इलाका बल्कि सभी सार्वजनिक जगह जैसे स्कूल, सामुदायिक केंद्र और तालाबों के आसपास कूड़ा या गंदा पानी जमा ना हो। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा ODF प्लस IEC मैनुअल के अनुसार
1: हर गांव की सफाई और प्रगति को जानने के लिए एक रेटिंग सिस्टम है जो बताता है कि गांव में कितना सुधार हुआ है। ये स्टार टियर प्रणाली के जरिए होता है। सबसे पहले आकांक्षी गांव की बात करते हैं। ये ODF यानी खुले में शौच मुक्त गांव है जो कचरे या गंदे पानी के प्रबंधन की शुरुआत कर चुके हैं। फिर आते हैं उभरते गांव जहां ठोस और तरल दोनों तरह के कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है। और आखिर में आदर्श गांव वे हैं जो ODF प्लस के सभी नियमों को पूरा करते हैं। यहां नियमित सफाई होती है और गांव वाले सफाई और जागरूकता फैलाने में सक्रिय रहते हैं।
0: वैसे ODF प्लस मॉडल गांव बनाना मुश्किल काम नहीं है, बस छोटे छोटे उचित कदम उठाने की जरूरत है। पहला कदम सभी घरों में शौचालय का इस्तेमाल करना है ताकि कोई भी खुले में शौच ना करे, मतलब साफ सफाई ऐसी हो जो आंखों से दिखे, यानी घरों, स्कूलों या सड़कों पर कूड़ा या गंदा पानी नजर ना आए। गांव में सभी घरों से कचरा इकट्ठा होना चाहिए। जैविक कचरे से खाद बनाई जा सकती है। नहीं गलने वाले कचरे का सही तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। गंदे पानी को साफ करना जरूरी है, इसके लिए नालियां ठीक करनी होंगी, पानी सोखने वाले गड्ढे बनाने होंगे और साफ किए हुए पानी का दोबारा इस्तेमाल करना होगा। साथ ही लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक भी करना होगा। लोगों को ये समझना चाहिए कि सफाई सिर्फ सरकार का काम नहीं, सभी की जिम्मेदारी है। जब गांव वाले मिलकर काम करते हैं तो उनका गांव ODF प्लस मॉडल बनकर पूरे देश के लिए अच्छा उदाहरण बनता है।
1: गांव में सब

0: सफाई और पानी से जुड़ी अच्छी आदतें लगातार बनी रहें। इसलिए मजबूत ग्राम जल और स्वच्छता समिति या VWSC का होना बहुत जरूरी है।
1: गांव में VWSC यानी ग्राम जल और स्वच्छता समिति बहुत जरूरी है। ये कोई बाहर की नहीं, आपके गांव की समिति है। इसमें आपके गांव के लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। इसका मतलब है कि सफाई और बदलाव लाने की जिम्मेदारी और ताकत आपके गांव में है। VWSC समिति का काम गांव को साफ सुथरा बनाए रखना है। इसमें हर घर की भूमिका होती है। जब इस समिति के साथ मिलकर सभी लोग काम करते हैं तो एक साफ और सेहतमंद गांव बनना आसान हो जाता है।
0: बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि VWSC में कौन कौन लोग होते हैं। इस समिति के 5 सदस्य महिला प्रतिनिधि, आशा बहन और यहाँ तक कि स्कूल के टीचर भी होते हैं।
1: हाँ, और आप जानते हैं कि आपके गांव को साफ और सेहतमंद बनाए रखने में VWSC का अहम रोल होता है। मैं आपको इस समिति के काम के बारे में बताती हूँ। ये समिति गांव के लोगों को सफाई से जोड़ने की योजना बनाकर इसे हकीकत में बदलती है। साथ ही समिति ये ध्यान रखती है कि गांव में सफाई से जुड़े काम जिले की बड़ी योजना से मेल खाएं और गांव को साफ सुथरा बनाए रखने में मदद करें। VWSC सफाई के लिए मिलने वाले फंड को सही तरीके से खर्च करती है। पैसे का उपयोग खाद बनाने के गड्ढे, पानी सोखने वाले गड्ढे और कचरा निपटाने के आसान तरीके तैयार करने में किया जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। VWSC सिर्फ सफाई से जुड़ा ढांचा बनाने का काम नहीं करती, बल्कि पूरे गांव को जागरूक भी करती है। ये समिति खासतौर पर महिलाओं और युवाओं को सफाई और कचरा प्रबंधन की आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ग्राम सभा और पंचायत की बैठकों में सबको बुलाया जाता है ताकि हर कोई ये समझ सके कि साफ सफाई सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे गांव की जिम्मेदारी है।
1: तो दोस्तों, अपने VWSC का समर्थन कीजिए। ये सच में लोगों के लिए बनी समिति है।
0: क्या तुम जानते हो कि सामुदायिक निगरानी, संचालन और रखरखाव गांव में सफाई बनाए रखने के लिए जरूरी है?
1: रुको रुको, सामुदायिक निगरानी, संचालन और रखरखाव से तुम्हारा क्या मतलब है?
0: मैं समझाता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सामुदायिक निगरानी का मतलब है कि गांव के लोग खुद सफाई की जिम्मेदारी लें। गांव के लोग निगरानी समितियां बनाते हैं और ध्यान रखते हैं कि शौचालयों का सही इस्तेमाल हो, कचरा ठीक से फेंका जाए और सार्वजनिक स्थान साफ रहें।
1: अब संचालन और रखरखाव के बारे में समझते हैं। इसका मतलब है कि सफाई से जुड़ी जरूरी चीजें जैसे शौचालय, पानी सोखने वाले गड्ढे, खाद के गड्ढे और बायोगैस इकाइयां ठीक से चलती रहें और समय समय पर उसकी मरम्मत हो। VWSC इस काम में खास भूमिका निभाती है। ये समिति मरम्मत का इंतजाम, गड्ढे खाली करने की व्यवस्था और साफ सफाई के लिए जागरूकता फैलाने का काम करती है ताकि गांव हमेशा स्वच्छ बना रहे।
0: अब समझ में आया कि गांव के लोग खुद सफाई पर नजर रखते हैं, साथ ही VWSC की मदद से सफाई से जुड़ी व्यवस्थाएं ठीक से चलती रहती हैं।
1: बिल्कुल सही। जब लोग सफाई की योजना बनाने और उसे लागू करने में शामिल होते हैं तो वे इसे चलाए रखने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। कई गाँव में लोग बारी बारी से सार्वजनिक शौचालयों की सफाई करते हैं और जल निकासी दूर करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इससे पता चलता है कि जब लोग मिलकर जिम्मेदारी लेते हैं तो गांव में बड़ा बदलाव आता है।
0: हाँ, लोगों को सफाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जमा हुआ पानी को हटाना जरूरी है ताकि मच्छर ना पनपे। खास तौर पर घर के बाहर और पुराने टायरों में पानी जमा ना हो, क्योंकि वहाँ मच्छर तेजी से बढ़ते हैं। नहाने या कपड़े धोने से निकला पानी भी खुली नालियों में जाने की जगह सूखने वाले गड्ढों में जाना चाहिए ताकि गंदगी और बीमारियां ना फैलें।
1: गांव में सार्वजनिक जगहों को साफ सुथरा रखने के लिए स्कूल, अस्पताल, बाजार, चाय की दुकान और मंदिर में रंग कोडेड कचरा पेटियां रखनी चाहिए। हरे रंग की डस्टबिन में गले वाला कचरा जैसे सब्जियों का छिलका डाला जाए। नीली डस्टबिन में सूखा और ना गलने वाला कचरा जैसे प्लास्टिक और कागज रखा जाए। इससे गांव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखना आसान होगा।
0: लोग खुद आगे आकर स्वच्छता पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम चला सकते हैं। लोग दीवारों पर अपना इलाका साफ रखें जैसे संदेश लिख सकते हैं। लोग कबाड़ इकट्ठा करने वाले या कूड़ा साफ करने वाले से मिलकर ये तय कर सकते हैं कि अलग अलग किया गया कचरा खासकर प्लास्टिक सही तरीके से हटाया जाए और खुले में जमा ना हो।
1: दोस्तों याद है हमने एपिसोड 6 में ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में क्या सीखा था? जल्दी से याद कीजिए। रसोई का कचरा और गाय का गोबर बेकार नहीं होता, इन्हें खाद में बदला जा सकता है जो खेतों और पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल, अगर आपके घर या खेत के पास थोड़ी सी खाली जगह है तो आप वहां एक छोटा गड्ढा बना सकते हैं और उसमें रोजाना का गीला कचरा डाल सकते हैं, जैसे बचा हुआ खाना, खराब फल या गोबर। इसे कभी कभी हिलाएं और मिट्टी से ढककर रखें। धीरे धीरे ये बेहतरीन खाद बन जाएगी जो खेतों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इससे कूड़ा भी कम होगा और गांव की सफाई बनी रहेगी।
1: बस ध्यान रखिए कि खाद का गड्ढा घरों और पानी के स्रोतों से दूर होना चाहिए। गाय का गोबर खाद या बायोगैस बनाने में काम आ सकता है, जिससे खेती बेहतर होती है, सेहत सुधरती है और हमारा वातावरण हरा भरा रहता है। तो चलिए स्वच्छता और पर्यावरण के लिए मिलकर काम करें।
0: हाँ बिल्कुल, जब लोग खुद सफाई की पहल करते हैं तो उसका असर लंबे समय तक दिखता है।
1: सफाई सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम मिलकर काम करें तो हमारा इलाका साफ और सुंदर बना रहेगा।
0: आपका गांव मिलकर ये कर सकता है। स्कूली बच्चों, युवा समूहों, स्वयं सहायता समूहों को सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए इकट्ठा करें। हर महीने एक दिन सफाई अभियान चलाएं। चाय की दुकानों, मंदिरों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर कूड़ेदान रखें। लोगों को रसोई और गोबर के कचरे से खाद बनाने का तरीका सिखाएं। इससे कचरा कम होगा और खेतों की पैदावार बेहतर होगी। आंगनवाड़ी या स्कूल के पास एक छोटा सा सामुदायिक बाग बनवाएं।
1: श्रोताओं, सफाई सिर्फ सरकार या पंचायत की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम घर पर कैसे सफाई रखते हैं, कचरे का सही निपटान कैसे करते हैं और अपने बच्चों को स्वच्छता की आदत कैसे सिखाते हैं, इन्हीं छोटे छोटे कदमों से हमारा गांव साफ और सुंदर बनता है। चलिए मिलकर पहल करें और अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं।
0: दूसरों का इंतजार किए बिना खुद सफाई की पहल करें। अपनी रोजमर्रा की आदतों में सफाई को शामिल करें। प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और स्वच्छता का उतना ही ध्यान रखें जितना हम अपनी सेहत का रखते हैं।
1: याद रखिए कि स्वस्थ गांव ही खुशहाल गांव होता है और स्वच्छ गांव ही सबसे मजबूत गांव होता है।
0: आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने गांव को साफ रखें।
1: संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी से जाने का होता है। समय श्रोताओं, यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे नंबर पे फोन करके, हमारा नंबर है 92 19 20 77 49। अब हमारे सवालों की बारी है जो आपसे पूछने हैं, जो कि हमने पहले भी पूछे हुए थे कार्यक्रम शुरू होने से पहले। तो पहला सवाल है, क्या साफ सफाई सिर्फ घर की होनी चाहिए या बाहर की भी जरूरी है, हाँ या नहीं? सवाल नंबर दूसरा है, क्या हमें खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, हाँ या नहीं? सवाल नंबर तीसरा, क्या स्कूल, तालाब और बस स्टॉप जैसे जगहें भी साफ सुथरी होनी चाहिए, हाँ या नहीं? मिलते हैं अगले कार्यक्रम में और इन तीनों सवालों के जवाब आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर से 92 19 20 77 49। अब अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
0: और अपने रेडियो साथी माता दिन भैया को दो
1: जाने की अनुमति। फिर मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को आपके रेडियो साथी मनीष की दो हाथ जुड़ के नमस्कार, राम राम पहुंच जावे। और किसान भाइयों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे सभी किसान पंच भैया बहने अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे किसान साथियों की जो इस बार ज़्यादा बरसात को हो गई हैगी, ऐसे बरसात में हमारे बहुत सारे किसान साथियों ने अपनी बोनी भी नहीं कर पाई है, तो कई किसान हमारे मायूस भी हुई हैं और कई किसान खुश भी हुई हैं कि अच्छा पानी गिर गया है और आगे की फसल को हम अच्छी तरीके से और जल्दी से और जो टाइम बुवाई कर रहे थे वो टाइम पे अपन बुवाई कर लेंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैंगे, जो भगवान जरूरत हैंगे और भगवान के संगे संगे जो अपना पर्यावरण बदल रहा है वो कछु ना कछु तो विचार हमें जा पे करें चाहिए कैसे पर्यावरण बदलत है वो। और पर्यावरण बदलवे से जे सारे नुकसान देख देखों और सुन देखों मिलत हैंगे। लगातार कितने दिन से अपने यहाँ बरसात हो रही है और इतना पानी चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है वो, तो खुशी की बात भी है और दुख जा बात को है कि किसान साथियों की मोनी नहीं भैयेगी। आज हम हमारे किसान साथियों के लाने गेंदे की खेती कैसे भी कर सकते हैं, कैसे फूलन को व्यवसाय भी एक व्यवसाय रहेगा और खेती भी रहेगी और जो अपने एग्रोफॉरेस्ट्री करते हैं यानी कृषि वानिकी जो करते हैं बीच बीच में अगर हम गेंदन के पौधा लगा देंगे तो सीजन भी आ रहा हैगो और सीजन में वे गेंदन के जो फूल रहेंगे काफ़ी अच्छो मार्केट भी हमें मिल सकत है वो, तो यही विषय पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे पहले अपन एक नज़र डाल लेते हैंगे मौसम चक्र पे, कैसे मौसम जो अपनों का कथ है वो, मौसम हमारे लाने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है वो, तो मौसम की जानकारी भी अपन सुनो। तो सबसे पहले अपन बता रहे हैंगे मौसम की जानकारी, हमारे संग हैं वर्षा, तो भी मौसम की जानकारी हमें बताएं।
1: श्रोताओं नमस्कार, जब मौसम की जानकारी हम आपको पहुंचा पा रहे हैंगे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से। साथियों, उड़द व मूंग की फसल में जड़ सड़न रोग देखो जा रहा है वो, अतः किसान भाई किलाने फसलन को निगरानी करत रहे, साथ ही में खेत में पाए जावे वाले रोकथाम हेतु 2.5 ग्राम मैन को जैव दवा की मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ हुए पे छिड़काव जरूर कर देवे। साथियों, आवे बारे 3 से 4 दिन के दौरान गरज चमक के संगे हल्की से मध्यम वर्षा तथा आसमान में 60 से 80% बादल छाए रहने की संभावना हैगी। दिन के अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात को न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना हैगी। हवा की औसत गति 14 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। आवे बारे 3 दिनन के दौरान गरज चमक के संगे हल्की से मध्यम वर्षा तथा आसमान में 60 से 80% बादल छाए रहने की संभावना भी हैगी। इको ध्यान में रखत भय सब्जियन में दलहनी तथा तिलहनी फसलन में जल भराव की समस्या हो सकत हैगी, अतः किसान भाई जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लेवे। संगई में कीट व्याधियन के लाने निगरानी को कार्य भी करत रहे, साथ में यदि जरूरी हुए तो किसान भाई दवा को छिड़काव करत रहे समय पे। इमें 1 लीटर टी पॉल भी मिला लेवे। इस समय धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लाने खरपतवार नियंत्रण हेतु 20 पाई रीबैंक सोडियम 250 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करवें तथा पहले से लगाई गई धान की फसल में तना छेदक कीट की संभावना बनी हुई, यदि दिखें तो कारटप हाइड्रोक्लोराइट 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालवें। जिन किसान भैयन की टमाटर मिर्च तथा बैगन आदि की पौध तैयार हैगी वे इनकी रोपाई मेड़न पे यानी उथली क्यारियन पे करवे। बादल छाए रहने की संभावना को ध्यान में रखत भय कद्दू वर्गीय सब्जियन में फली छेदक कीट जैसे फली मक्खी फली बग और प्लम्ब मोथ कॉपर को भी देखबे की संभावना बनी हैगी। ईखो नियंत्रण करबे के लाने प्रोफेनोफॉस 50 EC 1500 मिली है।

0: हेक्टेयर खों 600-700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देवे। बैगन में फल छेदक कीट को प्रकोप भी देखो जा रहा है। वो इसके नियंत्रण हेतु क्लोनाफॉस 25 ईसी दवा की 2.0 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव साफ मौसम में कर देवे। अरबी में कंदगलन रोग को प्रकोप देखो जा रहा है। गो सो साथियों, ईके लाने बचाव हेतु आपको मेटालेक्जिल मैनकोजेब दवा को 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ होवे पे छिड़काव करवे। पशुओं को ज्यादा हरी घास ना खान देवे, नहीं तो अफरा की समस्या भी हो सकत हैगी। आसमान में बादल छाए रहवे के कारण धूप की अवधि में कमी को देखत भय किसान भाई मुर्गी घरन में रात के समय 4-5 घंटा रोशनी की व्यवस्था कर देवे तथा इके दानन में ऊर्जा और विटामिन की मात्रा बढ़ावे, संगई में कैल्शियम भी मिला के दे देवे। तो किसान भाइयों, आप सब जने सुन रहे थे जानकारी, मौसम आधारित जानकारी, और जानकारी आपको दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से। नमस्कार।
1: तो साथियों, अभी आपने हमारे वर्षा जी से मौसम आधारित जानकारी को सुना, और जानकारी हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो गेंदा की खेती पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, उस चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर एक विराम लेते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, और गीत के बाद आपको सीधा विषय विशेषज्ञ के पास ले चलेंगे और उनसे जानेंगे किस तरीके से गेंदे की खेती, कैसे सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, क्या क्या किस तरीके से हमें लगाने और विधि क्या हो सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: मेरी गोल्ड फार्मिंग, गेंदे की खेती कब और कैसे करना चाहिए, वेस्ट वैरायटी जो कि हाइब्रिड किस्में हों। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए और व्यवस्थित तरीके से कैसे आप गेंदे की मेरी गोल्ड फार्मिंग की एडवांस खेती, वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, पौधे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, स्प्रे खाद और उर्वरक की मात्रा, इरिगेशन फर्टिगेशन के साथ साथ खरपतवार की रोकथाम, उत्पादन लागत, मुनाफा और नेट प्रॉफिट के साथ साथ लाइफ साइकिल।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मेरी गोल्ड फार्मिंग वैसे कई सारे किसान करते आए हैं और कई सारे राज्यों में होती है, लेकिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात दो तीन चीजें हैं मैं ऐसा जानता हूं और हमने महसूस किया है, कई किसानों ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो गेंदे की फूल की खेती के साथ कुछ दो तीन बातें जुड़ी हुई है जो सबको नहीं पता है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, तो मैं उस टॉपिक के बात करूंगा। वैसे बहुत आसान खेती है, लेकिन उसमें पैसा कमाना और पैसा बनाना, जमीन को सुधारना, पेस्ट डिसीज कंट्रोल करना, वो सब साथ में उसके फायदे जुड़े हुए हैं। तो हम कहीं ना कहीं एक ही टॉपिक में दो तीन टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनना, अंत तक बने रहना ताकि आप कोई चीज मिस ना कर जाए। तो गेंदे की फूल की खेती मुनाफाकारक बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो है वो चीज है बुवाई का समय। तो बुवाई का समय कब करना चाहिए ताकि आपको रेट ज्यादा मिले, तो उसका एक जानकारी है, दूसरी वेराइटी, तीसरी चीज है उसमें थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट और उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर पे बिजाई कब करें। किशन भाइयों, नॉर्मली गेंदे का फूल ट्रांसप्लांटिंग के बाद 40 से 45 दिन में पहला फूल दे देता है और उसके 15 से 20 दिन में 2 से 3 तुड़ाई हो सकती है। कोई अच्छी ट्रीटमेंट चलती है तो पहले 45 दिन के बाद और 20-25 दिन आप आगे ले सकते हो। तो गेंदे का फूल आप मानो कि टोटल हम 60 दिन, 2 महीने का पीरियड गिनते हैं कि प्लांटिंग से लेके पहला फूल और वहां से 15 से 20 दिन, नॉर्मली तो टोटल 60 दिन पकड़ते हैं हम। तो आपको सबसे ज्यादा रेट कब मिलेगा, गेंदे के फूल की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कब होती है? तो नॉर्मली ऐसा महाराष्ट्र में कहते हैं दशहरा से दिवाली के आसपास में अगर आपको फूल चाहिए तो आपको बिजाई करनी चाहिए। कब? तो कि आपको रक्षाबंधन में बिजाई करनी चाहिए। बहुत सिंपल गणित है, रक्षाबंधन के दिन आपने ट्रांसप्लांटिंग किया, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझो कि 15 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया, तो 15 अगस्त से 2 महीना, मतलब 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, यानी कि नवरात्रि, दशहरा या दिवाली के आसपास आपको फूल मिलेंगे। ये एक नॉर्मल कहानी है। आपको गणपति भी चाहिए तो उससे और 15-20 दिन पहले प्लांटिंग करना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हिंदू कैलेंडर के आधार पे जो त्योहार आते हैं, हमारे रिलीजियस फंक्शंस जो आते हैं, और उसके बाद शादियां शुरू हो जाती है, दिवाली के बाद शादियों का मौसम होता है। तो किशन भाइयों क्या है कि आपको 60 दिन पहले उसके प्लानिंग है। अभी इस बार की बात करें तो इस बार दशहरा दिवाली कब है वो कैलेंडर के आधार पे हमको प्लांटिंग सिलेक्ट करना चाहिए। तो अभी इस बार मान लो कि नवरात्रि की शुरुआत होती है लगभग 22 सितंबर से, लगभग 2 या 3 तारीख को दशहरा आएगा और उसके 20 दिन के बाद यानी कि अक्टूबर के एंड में आपको दिवाली आएगी। तो आपको समझना है सितंबर की 15 तारीख से लेके अक्टूबर की एंड तक ये डिमांड रहेगी पूरा 1.5 महीना। तो आपका प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए कब? तो कि लगभग 20 सितंबर से शुरू होना चाहिए प्रोडक्शन। तो आपको कहीं ना कहीं 15-20 दिन चला या 1 महीना चला, आप जितना चला पाए तो दिवाली तक खींच सके तो खींच लो। तो वैसे आप प्रोडक्शन का प्लान करते हो तो वहां से आप 60 डेज माइनस करो, या तो एग्जैक्ट फर्स्ट डे से तो 45 डेज माइनस करो, 22 सितंबर से 45 डेज माइनस, तो अगस्त और सितंबर के 22-22 दिन निकाल दो, तो 8 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया तो आपका गेंदे का फूल का प्रोडक्शन शुरुआत हो जाएगी नवरात्रि के अंदर, और फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा। दशहरा के दिन आपको ज्यादा प्रोडक्शन आएगा, उस दिन डिमांड भी ज्यादा रहती है, और उसके बाद में दिवाली पे भी आपका थोड़ा बहुत प्रोडक्शन आएगा। तो ये एक आयोजन ऐसा है, सबका अच्छा हो गया तो हो सकता है कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप थोड़ा दो तीन टप्पे में भी प्लांटिंग करते हो तो भी चलेगा। तो आप कुछ अगस्त के पहले वीक में करो, फिर अगस्त के दूसरे वीक में करो, एक अगस्त के तीसरे वीक में करो, ऐसा करोगे तो भी चलेगा। तो ऐसा करने से आपको एक बेनिफिट हो सकेगा, आपकी खेती में फूल लंबे अरसे तक थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े निकलते रहेंगे। तो मार्केट का फ्लक्चुएशन कम से कम लगेगा, तो आपको ओवरऑल रेट मार्जिन थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। अभी उसका एक सिंपल गणित मैं आपको बताता हूँ। एक एकड़ के अंदर मानो कि आपने प्लांटिंग किया है तो तकरीबन 6 से 7 हजार पौधे आएंगे। 6 स्क्वायर फीट में एक, यानी कि 3 से 3.5 फीट में लाइन आएगी और 1.5 से 2 फीट में आपको लगाना है। तो 6 स्क्वायर फीट में एक पौधा फैलेगा अच्छी तरह से, तो आपको 42,000 स्क्वायर फीट का एक एकड़ होता है, 43,560 लगभग। आप ऐसा गिनते हो तो 7,000 जितने पौधे आएंगे। 7,000 पौधे में से मानो कि 1,000 पौधे को बॉर्डर इफेक्ट, मर गया, डिसीज लग गया, और नॉर्मली आपके 6,000 बच गए, मैं तो बोलता हूँ 5,000 ही बच गए, और 750 से किलोग्राम वजन दे देता है, 4 से 5 टन वजन आता है, 50 रुपये किलो रेट भी रहता है, 100 रुपये भी रहता है। मैं तो ऐसा गिनता हूँ, एक नॉर्मल हिसाब करते हैं कि 4,000 किलो आपका प्रोडक्शन आया एक एकड़ में से, और आपको ज्यादा नहीं केवल 20 रुपये का एवरेज आया तो भी 80,000 का होता है। 10 रुपये भी रेट रहा किलो का तो भी 4,000 किलो का प्रोडक्शन आया, 40,000 का हुआ। ये सिर्फ 60, 65 और 70 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 80 दिन तक चलता है, उससे ज्यादा चलता भी नहीं। तो ये खेती एकदम जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में कि जैसे कैच क्रॉप है, आपने लगाया और तुरंत ले लिया, वो वाली है। अभी इसमें ध्यान रखने वाली बाबत ये है कि पहले नंबर पे आप कोई एक रंग का पसंद मत करो, मल्टी कलर में करो, यानी कि नारंगी वाला भी करो और पीला वाला भी करो। तो मार्केट में जिसका डिमांड ज्यादा होगा, एक का कम होगा, एक का ज्यादा होगा, कभी क्या होता है आपको पता नहीं, हमको पता नहीं मार्केट कहाँ पे ट्रेंड करता है, लेकिन दोनों लेके जाओगे आपका बिक जाएगा। कभी किसानों को ऐसा भी होता है कि कोई दिन 2-2 रुपये किलो भी बेचेंगे, तो कभी ऐसा होता है कि कभी 100-100 रुपये किलो भी बेचेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया है वैसे आप 2-3 फ्लक्चुएशन को टालने के लिए कि एक तो 2 कलर का करो, 3-4 टप्पे में करो, जैसे मैंने कहा अगस्त के पहले वीक में किया, दूसरा थोड़ा सा मतलब 1 एकड़ का प्लानिंग है तो 1/3 एकड़ यानी कि 10-15 गुंठा में अगस्त में पहले वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा में अगस्त के दूसरे वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा तीसरे वीक में किया, तो आपका गणपति से लेके दिवाली तक का प्रोडक्शन सेट हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमको खुद को ऐसा एक्सपीरियंस है, गणपति में रेट नहीं मिला उस दिन, उस साल सबका अच्छा हुआ था, फिर रेट नहीं मिला तो सबने निकाल दिया, हमने रखा था वैसे भी खर्चा कर चुके थे तो रखा था, तो दिवाली पे हमको रेट ज्यादा मिला तो हमारा पूरा खर्चा ले आया। ऐसा था कि हमने 2 रुपये किलो बेचा था और 120 रुपये किलो भी बेचा। तो ऐसा फ्लक्चुएशन टालने के लिए आपको कुछ डिसीजन भी बाद में लेने पड़ेंगे, लेकिन मैंने कहा कि 2 वेराइटी करो, 2-3 टप्पे में प्लांटिंग करो तो आपको आसानी से हो जाएगा। इसमें वो खाद वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गेंदे का फूल है वो इल्लियों को आकर्षित करता है, खास करके पतंग को अंडे देने के लिए आकर्षित करता है, तो उसमें हरी इल्ली आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो आप उसके लिए छिड़काव का कुछ प्रबंध कर सकते हो। नॉर्मली शुरुआत में थ्रिप्स आती है तो थ्रिप्स के लिए कोई प्रबंध कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव ब्लाइट वगैरह आता है तो उसको कोई प्रबंध कर दे सकते हो। खाद भी बहुत इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन फिर भी डाली की फूटान, वृद्धि विकास, कलर क्वालिटी, उसके लिए आपको चाहिए तो आप एक एकड़ में 1 बैग DAP, 1 बैग पोटाश पहले से डाल दो, बाद में डालने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फटाफट फटाफट फटाफट कार्यक्रम होता है इसमें। 60 दिनों में तो मतलब 45 दिनों में फ्लावरिंग आता है, 60 दिनों में पीक जाता है, फिर धीरे धीरे धीरे कम हो जाता है, 70-80 दिन में तो खत्म हो जाता है, मतलब पूरा 3 महीने की भी फसल है नहीं, 1.5 महीने में शुरू और 3 महीने में से पहले खत्म, ऐसी फसल है। तो आपको पहले से 1 बैग DAP, 1 बैग पोटाश डाल दो, मजबूती के लिए पोटाश भी जरूरी है, तो कलर के लिए भी जरूरी है, और बाद में 1-2 स्प्रे आप न्यूट्रिशन का ले सकते हो कि जब आप डाली फूटान की अवस्था में हो तो आप फास्टर ले लो कि ज्यादा से ज्यादा डाली फूटान का ग्रोथ जल्दी जल्दी आ जाए, और जैसे ही 40-45 दिन हो जाए तो 1 माइक्रोग्रेन का ग्रेड आप दे सकते हो, जैसे महाराष्ट्र में ग्रेड 2 है, गुजरात में ग्रेड 4 है, जो आपके राज्य का आपका जो भी ग्रेड है आप माइक्रोग्रेन का स्प्रे कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो आप स्टेलर वगैरह ले सकते हो, जिसके बाद बुद्धि विकास के साथ नंबर ऑफ फ्लावर भी बढ़े।

वृद्धि विकास ज्यादा हो रहा है तो 0-34 का प्रयोग करो, अगर ऐसा नॉर्मल है तो कोई जरूरत है नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है फर्टिलाइजर वगैरह में, कुछ ना करो तो सिंपल पहले बेसल डोज में संचार डाल दो, बाद में भूमिका डाल दो और उसके साथ में थोड़ा सा पहले डीएपी डाल दो आधी बैग और बाद में थोड़ा आधा बैग यूरिया डाल दो, थोड़ा सा पोटाश डाल दो तो भी चल जाएगा। खाद का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्लांट डेंसिटी मेंटेन करना। आपको 7000 प्लांट मेंटेन करने पड़ेंगे तो ही फ्लावरिंग अच्छी आएगी। दो वेराइटी अलग अलग करो, 2-3 टप्पे में करो तो आपको ये मुनाफे वाली खेती हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो जैसे मैंने कहा है कि 4 टन तो मिनिमम उत्पादन आता ही आता है 4000 किलो, और उसके बाद में आप अच्छी सी मेहनत कर लेते हो तो थोड़ा उत्पादन बढ़ने की भी संभावना है, और आपका नसीब लग गया और 4 टन में से 1000 भी टन 30-40 रुपए किलो चला गया तो 30-40 हजार तो उसी पीकिंग का आ जाएगा, बाकी का 20-30 हजार दूसरा आएगा, तो 50-60 हजार प्रति एकड़ 2-3 महीने में आ सकता है। अभी आते हैं ना दूसरी बात, जैसे मैंने पहले बताया ये फसल कुछ पेस्ट को आकर्षित करती है, यानी कि हरी लीफ की जो पतंग होती है उसको आकर्षित करती है अंडे रखने के लिए। तो ये आप कोई भी ऐसी फसल लगाई है जैसे कि वेजिटेबल्स लगाया है या तो अरहर लगाई है तो उसकी बॉर्डर पे कर दो, या तो एक एक लाइन छोड़ के एक एक में करो। तो अरहर वगैरह लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, 4-5 महीने का फसल है। बैगन वगैरह 4-5 महीने का फसल है तो उसकी बॉर्डर पे आप लगाते हो, या तो 2-3 लाइन लगा के लगाते हो तो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम 45-60 दिनों में हो जाएगी, प्लस उसके साथ ही साथ में वो इल्लियों को आकर्षित करता है तो वहां इल्लियां ज्यादा आएगी, तो आप दवाई उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो और आपको निगरानी में भी रख सकते हो कि भाई यहाँ पे इल्लियां ज्यादा है तो अभी आगे अपनी मुख्य फसल में भी इल्लियां आएगी, तो एक ट्रैप क्रॉप की तरह भी आप उपयोग कर सकते हो इसको। दूसरा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जमीन के अंदर निमेटोड कंट्रोल करता है। लोगों के अलग अलग विचार है इसमें कि ऐसा बोलते हैं कि भाई इसमें निमेटोड ज्यादा आ जाते हैं इसलिए मुख्य फसल में नहीं आते, कुछ लोगों का ऐसा सोचना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो हमको सुगंध आती है वो अल्कलॉइड है और वो कहीं ना कहीं निमेटोड के लिए जहर है, मतलब वो खाने से रोकता है। और खास करके हमने ऐसा देखा है, ये हमारा अनुभव है, गलगोटा जिसको बोलते हैं देसी वाला, उसमें थोड़ा वो प्रमाण ज्यादा होता है जड़ों में। और अगर आप वो पर्पज से कर रहे हो तो जैसे मैंने बताया कि निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए कर रहे होगे, जैसे कई किसान भाई हमने देखा है कि राजस्थान में चोमू वाले इलाके में, ये गुजरात में अगर आते हैं तो ईडर के आसपास के इलाके में, मेहसाणा के आसपास में आते हैं, राजकोट के आसपास में, बड़ौदा के आसपास में, महाराष्ट्र में आते हैं तो ये नारायणगांव के आसपास में इलाके में, जमीन में मीडियम टू लाइट सॉइल है, जमीन उपजाऊ बहुत है, तो मीडियम टू लाइट सॉइल मतलब निमेटोड ज्यादा। इवन चिली वाला एरिया, कहीं भी चिली मिर्ची वगैरह होती है, लौकी वगैरह होती है, कुकुरबिटेसिस फैमिली का होता है, वहां जमीन में निमेटोड बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप एक मानसून सीजन में इसकी खेती करो, और थिक डेंसिटी, जैसे मैंने बोला नॉर्मल कॉमर्शियल फार्मिंग करने के लिए आपको 6-7 हजार पौधे लगाना है, इसमें 10 हजार पौधे लगाना है, और देसी वाला गलगोटा कर देना, आपका एक सीजन जाएगा लेकिन लगभग लगभग निमेटोड से 80-90% शांति मिल जाएगी। ये ट्रीटमेंट ऐसी है कि मानो कि कुछ ना किया, आपने 8-10 हजार पौधे लगाए हैं तो आपका 4 टन भी 5 टन भी प्रोडक्शन आ गया और 10 रुपये भी रेट आ गया तो आपको 50 रुपये मिलेंगे और ऊपर से फ्री में निमेटोड कंट्रोल हो जाएगा। वैसे कई किसान भाइयों को पता होगा कि निमेटोड की दवाइयाँ बहुत महंगी आती है, मल्टीपल टाइम ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता। जब ट्रीटमेंट किया है तो 10-15 दिन 1-2 महीना अच्छा लगता है, फिर दूसरी चीज में दूसरा प्रॉब्लम। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आप कर सकते हो कि आप इसकी खेती कर लो, थोड़ा थिक डेंसिटी प्लांटिंग करो और उसमें जमीन में जब ये इसका जो मटेरियल जाता है जिसको रूट एक्जुडेट बोलते हैं, उससे निमेटोड को खाने में बहुत तकलीफ होती है, उसको अवॉइडेंस बोलते हैं कि मतलब कॉन्टेक्ट, जड़ से कॉन्टेक्ट जो होना है वो होता नहीं, हुआ तो भी बहुत इन्फेक्शन होता नहीं। ओवरऑल कहने की बात यह है कि ये निमेटोड को मैनेज करने में बहुत अच्छी तरह से सक्षम वनस्पति है, ये इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो मैंने 3 पार्ट बताए, एक पार्ट ऐसा है कि इसकी खेती में मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट ऑफ सोइंग है कि कब सोइंग करोगे तो कब प्रोडक्शन आएगा। तो मेरे हिसाब से, अभी के हिसाब से ऐसा है कि अगस्त के 1, 2 या 3 पखवाड़े में किया तो आपको फायदा होगा, लेकिन मार्केट की फ्लक्चुएशन से निजात पाने के लिए आपको 2

प्लांट लगाते हैं दो साइड पे, मतलब ये लाइन है ये लाइन है, तो यहाँ पे लगा देते फिर उस तरफ नहीं लगाते फिर आगे लगाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कमर्शियल की तरह लगाओ, एक पेड़ के आसपास में 15-20 पौधे लगा दो गोल लाइन, हो सके तो ज्यादा लगाओ, बराबर आपका प्रोडक्शन भी आएगा, मार्केटेबल वॉल्यूम आएगा आपको, कि आप मार्केट में ले जा पाओ उतना वॉल्यूम में प्रोडक्शन होगा, तो आपको मानसून में खर्चा निकल जाएगा बहुत बड़ा। आप ये पपाया में लगा सकते हो, पपाया की बॉर्डर पे एक कैच क्रॉप की तहत आ जाएगा, क्योंकि पपाया का नॉर्मली लागवड जो होती है नॉर्मल पपाया लगाते हैं मार्च अप्रैल या तो मई में लगाते हैं, तो पपाया छोटा सा रहता है तो उसके बाजू में आप लगा सकते हो, लगभग एक पपाया के आसपास में लगभग 4 से 5 पौधे 10 पौधे भी लगा सकते हो। ये कोई खाद खाता नहीं है, जितना पपाया में डालते हो उसमें 10-15% खाएगा, लेकिन जो निमेटोड के सामने रक्षण करेगा और जो इल्लियों को बचाएगा उतना ही काफी है, तो उतने से आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो खास करके बागवानी जो फसलें हैं उसमें ये एक कैच क्रॉप प्लस ट्रैप क्रॉप की तरह आप उपयोग कर सकते हो। तो इसलिए मुझे गेंदे का जो खेती है बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि किसान को फायदा ही फायदा करवाता है, कि एक एंगल से नहीं आप मल्टीपल एंगल से देखो आपको फायदा होता है। कभी ऐसा होगा किसी किसान का होगा, हमारे साथ भी हुआ है ऐसा, कि 1-2 रुपये में किलो में बेचा और कोई फायदा नहीं हुआ, पूरा 3-4 टन माल था और पूरा हमने 4-5 हज़ार रुपये लिया, कि जितना तो उसमें डाला था उतना भी नहीं आया, लेकिन फिर वो जमीन सुधर जाती है, वो दूसरा बेनिफिट है, वो सब बेनिफिट मिलते हैं। इसलिए खास करके इसको एज ए सिंगल क्रॉप लोग नहीं करते, मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, या तो जैसे मैंने बताया सिंगल क्रॉप करना है तो मल्टीपल टप्पे में, मतलब 1-2-3 टप्पे में प्लांटिंग करना है। तो किशन भाइयों खूब खूब धन्यवाद, हमको अच्छी तरह से सुना।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे इस प्यारी सी चर्चा को। हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा होगी और हमारे किसान साथी जो घर पर बैठे हैं वो इस तरीके की खेती कर अपने व्यवसाय के रूप में इसको ले सकते हैं। और व्यावसायिक तरीके से यदि हम खेती करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे किसान साथियों को फायदा ही फायदा होगा। और अगर वैज्ञानिक विधि से हमारे किसान साथी इस फसलों को करना चाहते हैं तो जरूर अपने कृषि विस्तार अधिकारी या फिर संबंधित वैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में आने वाली फसलों के लिए हम तैयारी भी कर सकते हैं, साथ में अपनी मिट्टी की परीक्षण भी करा सकते हैं और अपने मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है उसकी भरपाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि हम अब आने वाले समय में हम केमिकल से भरी खादों का इस्तेमाल करते हैं उसको ना करके हम जैविक विधि से अपनी खेती को करें, ताकि अपनी फसल जो उत्पादन होगा कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक कम होगा, लेकिन इसके बाद उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी और हमारे साथियों को ये राहत भी मिल जाएगी कि हमें जैविक भरी जो फल या सब्जियां रहती हैं या फूल रहते हैं उनका सेवन हमें करने को मिलेगा। तो हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे। नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबीरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों हमले के आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों एक क्रम में आज भी अपन एक विधा को सुने और विधा को आनंद ले हैं। बा विधा है लांगुरिया। जी हाँ दोस्तों, सो देखो लांगुरिया गीतन को अपन सुनते हैं और इन गीतन को आनंद लेते हैं। सो आओ सबसे पहले गीत सुनते हैं अपन भैया हरदयाल जी के स्वर में के बेंदा ले दे लांगुरिया। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

नोने मड़के नो दरवाजे के दर्शन कर ले लांगुरिया। देखो कितनी प्यारी जा लांगुरिया, अपन ने सुनी है ये लांगुरिया गीत को, आनंद लो है दोस्तों। ये लांगुरिया को गा रहे थे भैया दिनेश सोनी जी और संगे गा रही थी संध्या सरगम जी। सो आओ दोस्तों, अब एक क्रम में कार्यक्रम में फिर से सुनाते हैं अगले साथी इनकी गाई भाई लांगुरिया को और लेते हैं लांगुरिया गीत को आनंद। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।